0: सुकून जाएगी।
1: क्या हाल, नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के हम रेडियो पे एंड आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं लंच बॉक्स शो में। पहले इसमें नाम केतन है, मैं अभी से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे हूँ। बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने, बहुत सारी गपशप, बहुत सारे अपडेट और सबसे खास बात, एक ऐसी चीज हो रही है मार्केट में बाहर जिसका अपडेट हम देने वाले हैं डायरेक्ट सीधा यहाँ से। यानी कि हमारी टीम पहुंच चुकी है एक ऐसी जगह, अगर आप ग्रोसरी करना चाहते हैं या फिर ग्रोसरी पे जाना चाहते हैं ग्रोसरी करने, तो यस, डोंट गो एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम दिस वन शॉप विच इज 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यू लिन फूड फॉर लेस। वहां पे जाएंगे, ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा मौका मिलेगा, खरीदिए जो भी आप जो नॉर्मल चीज करते हैं वो सब करिए, बट सबसे खास बात है कि हमारी टीम वहां पे है जो आपको मौका देगी $100 जीतने का हर घंटे। वेल, उसके लिए क्या करना है, आप ऑब्वियसली हमें तो सुनाई बट साथ साथ में आप शॉपिंग पे भी पहुंच जाइए, आप ड्रॉ में शामिल होंगे। आपको स्टोर में ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको अपडेट मिलेगा ऑन एयर, बट आप जाइए शॉप एंड स्टोर एंड गो टू द ड्रॉ जहां पे आप हर आर $100 जीत सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के लिए ही है, यानी कि 11 से शुरू हुआ था, अभी 12 बज चुके हैं और ये 2 बजे तक ही है। सो यस, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो टाइम देख के, थोड़ा एग्जिट देख के, यू टर्न लेके आप पहुंच जाइए 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यू लिन में। जी हाँ, और सबसे खास बात है, अगर बाय चांस आप वहाँ पहुंच चुके हैं, बाय चांस नहीं मतलब पर्पसली वहाँ पहुंच चुके हैं और बैग भूल गए हैं, या फिर आपको वापस घर जाके बैग लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वहाँ पे हम आपको बैग दे देंगे जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। जी हाँ, सो यस, गो देयर एंड सी, मीट अवर फ्रेंड्स, मीट योर फेवरेट आरजेज ओवर देयर, और साथ में ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन में पार्ट लीजिए ताकि आपको क्या पता ग्रोसरी करने जा रहे हैं और फ्री की ग्रोसरी करने को मिल गया, क्या बात है, अब दिन बन जाएगा आज। बढ़िया, बने रहिए और थोड़ी देर में आप मुझे होमसिक रेमेडीज के बारे में भी टेक्स्ट भेज सकते हैं, वी विल बी रीडिंग आउट दैट टू।
2: बचाओ क्या,

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Welcome back. Well, yes, बात करेंगे और भी चीजों की, but yes, कुछ मैसेजेस मिले हैं मुझे होमसिक रेमेडीज के लिए. होमसिक रेमेडीज आपको पता ही होगा कि एक ऐसी चीज जो डेफिनेटली आप मिस करते हैं. एक्चुअली फोन आ रहा है, फोन भी उठा लेते हैं. काफी इंपॉर्टेंट कॉल है वैसे ये.
3: केतन.
2: हेलो. यस हाय पूजा, यू आर ऑन एयर राइट नाउ. हाउ आर यू? आपको आदत नहीं होगी ना ऑन एयर जाने की?
3: नहीं, मेरे को ऐसे ऑन एयर जाने की आदत नहीं है, पर आपके सरप्राइजेस से हम वाकिफ है, इसीलिए मुझे सरप्राइज होना नहीं चाहिए था, बट इट्स ओके. अच्छा केतन, मेरे साथ यहाँ पे सैंडी आ चुकी है एंड शी इज गॉट समथिंग रियली स्पेशल टू अनाउंस. तो पहले मैं इनको फोन देती हूँ एंड देन.
2: परफेक्ट, देयर यू गो.
4: हेलो.
2: हाय सैंडी, गुड मॉर्निंग. नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया अब तो.
4: गुड आफ्टरनून, कैसे हो केतन?
2: मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ. आप बताइए.
4: एकदम फर्स्ट क्लास. फूड फॉर लेस में हम पहुंचे हैं जो कि न्यू लिन में है अंडर न्यू मैनेजमेंट एंड इट्स अमेजिंग ओवर हियर. काफी लिसनर्स यहाँ पे पहुंचे हैं एंड अमेजिंग क्राउड भी है. मेरा एक सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि अगर आप इस और आ रहे हैं फूड फॉर लेस में, अगर आप न्यू लिन में आ रहे हैं, सो पार्किंग आप कहीं पे ढूंढ लीजिएगा पहले. सो मेक श्योर कि इनफ टाइम अपने आप को दे रहे हैं पार्किंग ढूंढने के लिए. पर ये है कि लोग शॉपिंग करके जब बाहर जाते हैं कंटिन्यूसली कोई ना कोई स्पॉट खाली होता रहता है, तो आपको थोड़ा वेट भी वहां पे करना पड़ेगा. एंड अमेजिंग डील्स है यहाँ पे, आई मस्ट से बहुत अच्छी डील्स है. एंड यू नो, आप जो भी सामान चाहते हैं अपने घर पे खरीदने के लिए, चाहे वो किचन का कोई सामान है, मसाले से लेके चाय का सामान, दूध हो गया, दही हो गया, कुछ भी, एवरीथिंग इज ओवर हियर. इवन द फ्रोजन फूड्स आर ओवर हियर. एंड प्लस अगर आपको शॉपिंग करते करते चाय कॉफी पीनी है तो चाय कॉफी भी है यहाँ पे.
2: क्या बात है.
4: तो उसका भी आप मजा ले सकते हैं.
2: नाइस. तो आपने वैसे
4: एंड ऑल्सो केतन.
2: हाँ जी, हाँ जी.
4: या ऑल्सो केतन, वी आप यहाँ पे $100 जीत सकते हैं. सो राइट नाउ जो फूड फॉर लेस में शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं या फिर जो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग गाइज कि आपको फ्रंट में हम की टीम दिखाई देगी. आपको यहाँ पे आके रजिस्टर करना है इफ यू वॉन्ट टू विन $100 का वाउचर. सो इन ऑर्डर टू विन $100 का वाउचर, टू गेट इन द ड्रॉ यू हैव टू कम टू अस. हम यहाँ पे हैं, इट्स मी सैंडी, रुजबे इज हियर, पूजा इज हियर, विजय इज हियर. तो हमारे पास आइए, हमारे साथ रजिस्टर कीजिए, तभी आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल होगा. एंड $100 ओवर द वीकेंड, स्पेंड इट आउट.
2: Wow, that's great.
4: And for now, yeah, and हम पहले विनर का नाम ऐसे अनाउंस करने वाले हैं. पहले विनर का नाम रुजवे यहाँ पे अनाउंस करने वाला है.
2: तो वो अभी exactly होने वाला same time?
5: अभी के अभी नाम अनाउंस करने वाला हूँ मैं. और आज के जो हमारे विनर है, पहले विनर, उनका नाम है अक्षय.
2: अक्षय,
5: ये है सीधे साधे अक्षय. अक्षय
2: राइट, पूरा नाम नहीं उनका अक्षय का.
4: So, अगर वो यहाँ पे
5: अभी आप उनका आधार कार्ड बनाओगे.
2: यहाँ पे यार अक्षय तो बहुत होंगे ना यार.
5: नहीं नहीं, वो यहाँ पे फूड फॉर लेस नहीं है, वो यहाँ पे आके अभी के अभी यहाँ पे क्लेम करेंगे. तो अक्षय, अगर आप हमें सुन रहे हैं, आ जाइए हमारे पास और आपका $100 शॉपिंग वाउचर क्लेम कर लीजिए.
2: परफेक्ट परफेक्ट.
5: और अगर आपको भी जीतना है $100 वाउचर, तो आइए फटाफट फूड फॉर लेस, जो एड्रेस अभी केतन बताएंगे आपको अंडर न्यू मैनेजमेंट, और आइए फटाफट यहाँ पे आपका नाम रजिस्टर कीजिए, फिर जाके शॉपिंग कीजिए और ऐसे करके आप जीत सकते हैं $100 शॉपिंग वाउचर.
2: Nice. Well, thank you so much.
5: समझा राजू?
2: बिल्कुल समझा यार, बिल्कुल समझा. पहली बार स्टूडियो में ऐसे हैंडल कर रहा हूँ. But it is amazing, yeah. You guys are there. Feeling थोड़ा थोड़ा jealous, but क्या करें, show भी है हमारा.
5: हाँ, FOMO feel हो रहा है ना. I know.
2: But thank you जो यहाँ पे बताया रुजबे ने अभी. So they are at Food for Less. आप जल्दी से पहुँच जाइए 13 Veronica Street, New Lynn. वहाँ पे जाके आप amazing shopping करिए. जो भी आपको grocery खरीदनी है वो सब कर सकते हैं और साथ में आप draw में भी शामिल हो सकते हैं जैसा कि उन्होंने बताया. और अभी का जो इस आर का नहीं, एक्चुअली लास्ट आर का जो 11 से 12 के बीच का था, वो जीत चुके हैं अक्षय. जी हाँ, अक्षय जीत चुके हैं, वो वहीं पे हैं और वो जीत चुके हैं. आप भी जीत सकते हैं, तो जल्दी से पहुंच जाइए 13 वेरोनिका स्ट्रीट, न्यू लिन. शॉपिंग करिए और अपना नाम भी ड्रॉ में शामिल करिए ताकि आप जीत सके 100. हो सकता है आपके लिए वो कम्प्लीटली फ्री हो. एंड गो एंड मीट द टीम.
0: लंच बॉक्स विद केतन.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
1: क्यों, क्या हुआ?
0: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.

0: ऑफिस शाउटआउट में आपका स्वागत है। सेंड करिए मुझे मैसेजेस, टेक्स्ट भेज दीजिए 5599 पे रिगार्डिंग व्हाट यू गाइस आर हैविंग, व्हाट यू वांट टू हैव, किसके साथ हैं आप और कहां पे खा रहे हैं, वेदर यू हैव ऑर्डर्ड सम फ्रॉम समवेयर या फिर खुद हाथों से अपने घर पे बनाया या फिर कोई लेके आया आपके लिए या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस, ये सारी बातें आप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। थोड़ा अलग तरीके से बताइएगा इस बार। हाँ, बट यस, मीनवाइल लेट मी जस्ट पुट सम लाइट ऑन रोवा। रोवा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री है, डाउनलोड करने में कोई पैसा नहीं है। फ्रॉम प्ले स्टोर ऐप स्टोर से जो भी आपका फ़ोन यूज़ कर रहा है, एंड्रॉयड या फिर iOS, डजंट मैटर, आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं उसे बेफिक्र। जी हाँ, वेल यस, जस्ट टू कंपेयर, बिकॉज काफ़ी लोगों को लगता है कि यार हमारा डेटा बच जाएगा, जस्ट टू लेट यू नो आप एक स्टोरी डालते हैं उसके कंपेयर में एक घंटा हमें रोवा ऐप के जरिए सुन सकते हैं। सो दैट हाउ द डिफरेंस इज। जी हाँ, बट यस, अभी के लिए आप बने रहिए, अभी ये आने शुरू हो चुके हैं मैसेजेस। मैसेज पढ़ लेते हैं। पूजा कहती हैं, नॉट द सेम पूजा, वो तो अभी सुपरमार्केट में है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, थोड़ी देर में फिर से कॉल करेगी, बताएगी अपडेट वहाँ का। बट ये दूसरी पूजा है, इन्होंने कहा है कि आई पैक्ड हेल्दी लंच टुडे बट माई कलीग ब्रॉट सम समोसास, डाइट ऑफिशियली कैंसल्ड। ये होता है, आपके साथ हुआ है कभी, आप फुल यू नो फ्रूट्स या फिर वेजीज लेके जा रहे हो और ऑफिस में सडनली यू सी लॉट ऑफ पिज्जास, लॉट ऑफ बर्गर्स, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और आप बोलते हो अरे यार फिर से। सो उस केस में आप क्या करते हैं, डू यू गो विथ योर इंटेंस, जो आपका जो मन कहता है, या यू ब्रेक द रूल एंड देन यू कंटिन्यू ऑन डाइट। वेल, डैरन कहते हैं, करंटली हाइडिंग इन माई कार ड्यूरिंग लंच ब्रेक जस्ट फॉर सम पीस एंड क्वाइट। ये भी सही है, ये भी सही है। केशव कहते हैं, मॉम मेड एक्स्ट्रा रोटीज दिस मॉर्निंग बिकॉज शी सेड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, इंडियन मॉम्स नेवर मिस। वेल, ये तो है यार, मतलब मेरी मम्मी भी हमेशा रोटी एक्स्ट्रा ही देती थी मुझे, ताकि यू नो इट इज ऑब्वियस टू शेयर विथ फ्रेंड्स जो भी हम स्कूल में पढ़ते थे उनके साथ। एंड उसके बाद आखिरी मैसेज अलीशा का, वो पढ़ लेते हैं, वर्किंग एट द एयरपोर्ट टूडे एंड लंच इज जस्ट क्विक सुशी बिफोर नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट, बिजी बिजी। अलीशा, उन्होंने मैसेज किया है मैंग्रे से। हैं, मैंग्रे भी पढ़ता है ना एयरपोर्ट तो? हाँ, आई थिंक सो, या बट यस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस। आप एंजॉय करिए, बहुत ही खूबसूरत गाना, मैं आपको थोड़ी देर मिलूंगा एक नई खबर के साथ।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना, तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

Welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan and you are being made. As I told you a little while ago, download the Roo app. Now it seems to be downloaded. If you haven't done it, then do it. And if you have done it, then start it. Because there is a game whose name is Chuddle. खेलिए जिसमें बेसिकली आपको क्या करना है फिल आउट करने हैं फ्रेजेस की भी वर्ड्स सेइंग ये सारी चीजें आप फिल आउट करिए बॉक्सेस में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और वो जैसे ही फिल आउट करेंगे कम गलतियों से यानी कि जितनी कम गलतियां करेंगे उतने अच्छे चांसेस होंगे आपके ड्रॉ में शामिल होने का और वो ड्रॉ आपको जिता के देगा $100 अ डे Wow, that's a great news, यार हमारे पास $7,000 तक के giveaways हैं काफी हमारे listener हम के listener ने जीते हैं आप भी उनमें से एक हो सकते हो so yes don't wait and go over there and then do the things so yes we will see you there but yes अभी आप बने रहिए because बहुत ही जल्द थोड़ी और update आएगी हमारी team की तरफ से जो अभी हाल फिलहाल

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
2: Well, आजकल हेल्थ को लेके काफी बातें होती है कि भाई हेल्थ को कैसे ध्यान रखें, क्या कुछ करें ताकि हम थोड़े फिट हों, खाने पीने पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें नहीं करें, ये सारी चीजें जो है ना हमें पता है. और अगर नहीं भी पता है तो या तो हम इग्नोर कर रहे हैं या फिर कहीं और से कोई और लोग बता ही देते हैं. मेरे को लगता है 90% लोगों को पता है कि भाई हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट बात यहाँ आ जाती है कि पता होने के बाद भी हम क्यों नहीं करते. मैं भी उनमें से एक हूँ. करीबन 2 साल हो गया है मुझे. एक ब्रांड है जिम वाले, उनको मैं बहुत अमीर दे रहा हूँ. अभी वो मिलियनेयर से बिलियनेयर हो चुके हैं और मेरा पैसा जाया जा रहा है और मैं लेकिन जिम नहीं जा रहा हूँ. बट यस, हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज हेल्थ के लिए अच्छी होती है, फिर भी जिम या वर्कआउट रूटीन जो है स्टार्ट करना इतना मुश्किल क्यों लगता है. एक नए हेल्दी रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, कंसिस्टेंसी और माइंडसेट की होती है. जी हाँ, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोग एक्सरसाइज के बेनिफिट्स तो समझते हैं, जैसे बेटर मूड, अच्छी स्लीप और हार्ट हेल्थ, लेकिन डेली रूटीन में उससे फिट करना डिफिकल्ट लगता है. रिसर्च के मुताबिक सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी सेल्फ एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर इंसान बिलीव करे तो वो बिजी स्केड्यूल के बावजूद एक्टिव रह सकता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो रूटीन जो है उसे कंटिन्यू रखे. हेल्थ स्पेशलिस्ट का कहना है कि परफेक्ट वर्कआउट प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल और रेगुलर मूवमेंट, वॉकिंग, गार्डनिंग, डांस या फ्रेंड्स के साथ एक्सरसाइज करना भी हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट बन सकता है. रिसर्च ये भी कहते हैं, दिखाते हैं कि ग्रुप एक्सरसाइज या दूसरों के साथ वर्कआउट करना, उससे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है. हाँ, वैसे एक्सपर्ट ये भी कहते हैं सिंपल मैसेज के फिटनेस एक ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि डेली हैबिट्स का रिजल्ट है. यानी कि जिस तरह से आप रोज पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये सब है, दैट इज हाउ इट शुड बी ट्रीटेड. यस, बट यस, बने रहिए, और भी बातें आने वाली थोड़ी देर में. आपके लिए चटनी शॉर्ट्स लेके आएंगे, यानी कि फटफट न्यूज थोड़ी देर में.
0: लंच बॉक्स विद केतन.
1: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
3: 80s के रेट्रो गाने.

चटनी शॉट्स में आपका स्वागत है, जहां पे आपको फटफट से न्यूज बताते हैं। और अभी की जो न्यूज है वो है बहुत ही दमदार, यानी कि चार पांच न्यूज मिला के आपके लिए फटफट से एक न्यूज बता देता हूं। सबसे पहले न्यूज पे थोड़े ध्यान देते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा म्यूजिक को लाउड करते हैं। वेल यस, न्यूज पहली है, साउथलैंड काउंसिल ने अपने मेयर को स्कैंडिनेविया भेजने पर लगभग $12,000 खर्च कर दिए, जिसको लेकर अब पॉलिटिकल डिबेट गर्म हो गई है। मेयर का कहना है कि ये ट्रिप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट थी। उसके बाद पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस न्यूजीलैंड में फिर से तेजी से बढ़ रही है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटरनेशनल टेंशन इसका बड़ा रीजन है। एश बटन में ग्रीन बिन रोल आउट का काम मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अफेक्ट हो गया है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल की सप्लाई और कॉस्ट दोनों इम्पैक्ट करती नजर आ रही है। साथ में क्राइस्टचर्च में एक हार्ट ब्रेकिंग हाउस में फायर में एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग इंजर्ड हुए हैं। इमरजेंसी सर्विस ने इसे बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट बताया है। वर्ल्ड न्यूज में रशिया ने क्वी में अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर स्ट्राइक की है, जिसमें कम से कम 9 लोगों ने अपनी जान खो दी है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास टेंशन और बढ़ गई है, जहां एक शिप सीज और दूसरा सिंक होने की रिपोर्ट्स में है। स्पोर्ट्स की दुनिया में न्यूजीलैंड के ऑल ब्लैक स्क्वाड को फीफा वर्ल्ड कप के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है, और वेटरन प्लेयर्स टॉमी स्मिथ ने अपने नए रोल को लेकर भी एक्साइटमेंट दिखाई है न्यूजीलैंड नेशनल फुटबॉल टीम के साथ। लंच बॉक्स विद केतन, इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।

0: Well, चलिए let's take you all to Food for Less, जहाँ पे हमारी टीम जो है वो आपका इंतजार कर रही है, तो अभी उनसे बात कर लेते हैं. Hi पूजा, how are you?
1: Hi Ketan, hello hello hello. और आज हम यहाँ पर सेटिन वेरोनिका स्ट्रीट न्यू लिन फूड फॉर लेस सुपर मार्केट के ग्रैंड ओपनिंग के लिए आए हैं. अंडर न्यू मैनेजमेंट आज से यहाँ पर ये ऑपरेट हो रहे हैं, तो आप भी आ सकते हैं, ओपनिंग स्पेशल से फायदा उठा सकते हैं. बट इन दिस लिंक आई गॉट समवन रियली स्पेशल विद मी हियर, जिनसे आप सबकी बातें कराना चाहूंगी. इफ यू रिमेम्बर, हमने कहा था ना कि आज जब तक हम यहाँ पर रहेंगे हर घंटे $100 का शॉपिंग वाउचर आप फोर फूड फॉर लेस सुपर मार्केट न्यू लिन जीत सकते हैं. So with me right now, we've got Krish Naidu, a very ardent listener of Hum, जिन्होंने आज का जो voucher है ये जीता है. So Krish, how are you?
2: I'm very good, thank you so much. How are you, Pooja ji?
1: I'm good as well. So Krish, सबसे पहले तो आप बताइए आज का आपका shopping experience कैसा रहा at Foodfulness New Lin?
2: It has been very good. So many deals to go through. और यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं, पार्किंग का बहुत बुरा प्रॉब्लम है, but definitely worth coming. मैंने तो ले लिया अपना जो भी सामान मुझे लेना था. और थैंक यू सो मच पूजा एंड हम एफएम टीम वाउचर के लिए, एंड डेफिनेटली मोर शॉपिंग टू डू नाउ.
1: थैंक यू सो मच क्रिश, एंड डेफिनेटली आपको भी बता दें कि अगर आप भी आज यहाँ पर बचत करना चाहते हैं, विनर बनना चाहते हैं, और वेराइटी ऑफ थिंग्स आप यहाँ पर आकर चेकआउट कर सकते हैं हमारे साथ. हमारी टीम 2 बजे तक रहेगी, सो वी होप टू सी यू एट 13 वेरोनिका स्ट्रीट इन न्यू लिट इन न्यू लिन फूड फॉर लेस सुपर मार्केट. रूजे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार. हाँ तो रूजे क्या बोल रहे थे, तुम बता दो जल्दी से सबको.
3: तो आते ही पहले अपना नाम रजिस्टर कराइए हमारे साथ और फिर जाके शॉपिंग कीजिए, बिकॉज शॉपिंग करते करते आप जीत सकते हो $100 का शॉपिंग वाउचर, जो आप आज ही क्लेम कर सकते हो. बेसिकली डील ऐसा बन सकता है आपका कि आप आके यहाँ पे शॉपिंग करो और फिर उसके बाद आपको खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि $100 का वाउचर आप शायद जीत जाओ. सो आपके लक के ऊपर है, बट उसके पहले आपकी कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको आना है यहाँ पे और आपका नाम रजिस्टर करवाना है हमारे साथ.
0: क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू, थैंक यू रुजबे, थैंक यू.
2: एक मैंने भी डाउनलोड किया
0: है. थैंक यू. वेल यस, मेरे को लगा शायद वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, बट थैंक यू. आप जल्दी से पहुंच जाइए 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यू लिन, जहां पे आपका इंतजार कर रहे हैं ये सारे हमारी टीम, यानी कि विजय, पूजा, सैंडी एंड रुजबे, यानी कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो एंड ऑफकोर्स ड्राइव शो वाली टीम वहां पे मौजूद है आपके आपके लिए, आपका इंतजार कर रही है. तो जल्दी से जाइए, शॉपिंग करिए, लेकिन शॉपिंग से पहले जैसा कि रुजबे ने बोला है, रजिस्टर करिए अपने आप को, ताकि आप इस के लिए अपने नाम को रजिस्टर कर सकें और वो हर आर में जीत सकते हैं. यानी कि पहले तो आप शायद जीत जाएं, फिर बाद में कोई और आपका नोन बंदा भी जीत जाए, एंड देन ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिव हम ग्रॉसरी बैग्स भी है, जस्ट इनकेस अगर आप भूल गए हैं तो वो भी आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं. नहीं भी है तो भी कलेक्ट कर लीजिए, इट्स अ गुड मेमोरी. सो यस, और काफी कुछ एक्स्ट्रा सरप्राइजेस भी हैं जो आपका इंतजार कर रही है. तो यस, यू टर्न लीजिए या फिर अगर वहीं हैं तो पहुंच जाइए फूड फॉर लेस अंडर न्यू मैनेजमेंट. जी हाँ, 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यू लिन में.

0: आवाज गूंजेगी। हम
1: लंच के मंच पे लंच बॉक्स विद केतन
2: आ गया आ गया आ गया।
1: हम
3: क्या नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेल यस, बात करेंगे बहुत सारी इस आर में आपके लिए। लंच टाइम रेंट लाइन लेके आऊंगा मैं, काफी एक्साइटिंग, मेरे लिए मुझे काफी फेवरेट लगता है बिकॉज इसमें काफी फनी मैसेजेस आते हैं कि भाई लोग करते क्या है, क्या क्या कांड करते होंगे या फिर क्या क्या कारनामे करते होंगे, उस पर चर्चा होती है, तो वो भी आप भेजिए। साथ में आपको एक अमेजिंग सा ऑफर भी देने वाला हूँ। आपको ये तो पता ही है कि हमारी टीम अभी हाल फिलहाल एक एक ग्रॉसरी स्टोर में है, वहां पे शॉपिंग कर रही है, उसके बारे में फिर से बात होगी थोड़ी देर में। जी हाँ, यू ऑल नो इट्स फूड फॉर लेस जो कि न्यूलैंड में है, 13 वेरोनिका स्ट्रीट, तो वहां जाके आप कर सकते हैं शॉपिंग, जीतने का भी आपके पास मौका है $100 वहां पे। वेल यस, उसके अलावा आपको कोड भी देने वाला हूं मैं। जी हाँ, आज कोड देने वाला हूं, किस टाइम पे वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट यस 1 बजे के बाद कभी भी आपके सामने आ सकता है। साथ में बॉलीवुड न्यूज की भी खबरें लेके आऊंगा, तो कहीं मत जाइए, एंजॉय करिए मेरा शो अंटिल 3।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: चलिए फिर से आपको लेके चलते हैं 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यूलैंड, जहां पे पूरी टीम में एक और बढ़ चुका है, यानी कि कशिका जी भी पहुंच चुकी है वहां पे. फूड फॉर लेस, चलिए बात करते हैं उनसे. हेलो
3: हेलो, गुड आफ्टरनून टू यू केतन, कैसे हो?
2: सेम टू यू, एकदम बढ़िया. आप कैसे हो?
3: एकदम बढ़िया भाई. हम पुकार रहे हैं इस समय हमारे लिसनर्स को जो आसपास कहीं पे भी न्यू वेरोनिका स्ट्रीट न्यूलैंड के आसपास हैं, तो फूड फॉर लेस सुपरमार्केट जो एक नए मैनेजमेंट के अंदर पहुंच चुका है, यहाँ पे बुला रहे हैं. $100 का लास्ट वाउचर हम देना चाहते हैं. तो भाई इनको बोलो सबको, हम की टीम को आके मिले, अपना नाम रजिस्टर करें बिल्कुल, क्योंकि यहाँ डील्स कमाल की हैं. और अगर आप पहले फूड फॉर लेस आए और अब आए हैं तो आप बहुत अच्छा एक डिफरेंस देखेंगे. इतना हाइजीनिकली ब्यूटिफुली प्लान्ड सुपरमार्केट बन गया है ये. अब बाकी के जितने भी अर्जुन सुपरमार्केट हैं, जो कि बॉटनी में भी है और साथ साथ न्यूलैंड में जो एक और है, तो दे केप्ट अप टू दैट स्टैंडर्ड्स. एंड साथ साथ जो इनके गिवअवेज हैं और जो इनके आपके लिए स्पेशल है, वाकई ही कमाल है. चीजें बिकती चली जा रही हैं और मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोग जो मिस आउट करें आज, क्योंकि हम के बैग्स भी मिल रहे हैं, हम की टीम यहाँ पे ड्राइव शो ब्रेकफास्ट शो है, और मैं तो हूँ और केतन तुमको हम मिस भी कर रहे हैं. तो भाई क्या कर रहे हैं, लोगों को पूछो, आवाज दो.
2: डेफिनेटली लोग तो आएंगे, बट आपकी आवाज सुन के अब सचमुच मुझे भी और ज्यादा फोमो हो रहा है. मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ?
3: अरे नहीं नहीं ठीक है, चलो मैं सैंडी से बात कराती हूँ.
2: बिल्कुल. वेल यस, आप पहुंच जाइए फूड फॉर लेस 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यूलैंड. सैंडी आ चुकी. हाय सैंडी.
4: या केतन, यहाँ पे काफी लिसनर्स आए हैं एंड जो मिले भी है आके यहाँ पे. आई वाज जस्ट रिक्वेस्ट की लास्ट आवर का अभी $100 का वाउचर निकालने का विनर बाकी है, तो अगर आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज जहाँ पे हम की टीम खड़ी है आगे काउंटर के पास, हमारे पास आइए, रजिस्टर कीजिए एंड आप यहाँ पे $100 का वाउचर जीत सकते हैं. तो आप यही पे आप स्पेंड कर सकते हैं, लास्ट वाउचर है ये.
2: क्या बात है, क्या बात है.
4: फूड फॉर लेस न्यूलैंड में.
2: राइट, वेल आखिरी जो ये वाउचर है ये जीतने के लिए पहुंच जाए फूड फॉर लेस 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यूलैंड. एज यू ऑल नो द होल टीम इज देयर अपार्ट फ्रॉम मी. अमेजिंग इन स्टोर स्पेशल, काफी कुछ चीजें हैं आपके लिए, और आपके लिए एक अमेजिंग सा मौका भी है जहां पे आप हिस्सा ले सकते हैं और जीत सकते हैं $100 ईच आर. और ये आखिरी टिकट, आखिरी वाउचर बचा हुआ है आप सभी के लिए, जो आपको वहीं यूज करना पड़ेगा. क्या बात है, मतलब आप जाओगे वहां पे और जीत सकते हैं $100 ऑन द स्पॉट. बट यस, 11 to 2 के बीच था ये, तो यस 11-2 तो अनाउंस हो चुके हैं, अभी आखिरी और है, तो पहुंच जाइए वहां पे, तो हम लेके आएंगे और भी अपडेट. बट अभी आप पहुंच जाइए 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यूलैंड, जो कि फूड फॉर लेस एक न्यू मैनेज के अंदर है. जी हाँ,
1: लंच बॉक्स विद केतन.
5: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
6: May month is NZ Music Month. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग. Presenting Back Your Backyard Beats, जहाँ हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार. आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे. ट्यून इन करो और अपने Backyard Beats को दो फुल सपोर्ट. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
7: Purani gaadi aur mehenga fuel kab tak chalega? Switch to Leap Motor C10 aur B10 Ultra Hybrid aur Electric. Sirf 44,990 plus on road se shuru. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane aur Botany. T's and C's apply.
8: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
9: Flooring Extra. Adore your floor.
10: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री. सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा. जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर. और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री. लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक. कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर.
0: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके। लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
11: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
0: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
11: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 9846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
12: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
13: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
14: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
13: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
14: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tāmaki showroom. It's worth the visit.
13: Elite Bathroomware.
14: A reflection of you.

0: Rantline. लंच टाइम ब्रंट लाइन के लिए आपका स्वागत है। यहाँ पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, कुछ मैसेजेस मिले हैं। यहाँ पे पहला मैसेज पढ़ता हूँ मैं अमित भाई का। वो कहते हैं why do Indian parents think switching internet off at night saves electricity? ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं जब इंडिया जाता हूँ वहाँ पे मतलब अभी तो खैर मैंने उनको समझा दिया है, बट जब हमने नया नया लगाया था तो रोज रात को मेरा डेटा चलता ही नहीं था। पता नहीं क्यों, मैं कहा मैं पे कर रहा हूँ हर एक चीज़ के लिए, डेटा क्यों नहीं था। मैं कंप्लेन करी, फिर कंप्लेन करके पता पड़ा भाई साहब आप इतने से इतने टाइम तक आपका कंप्लीटली लाइन जो है वो ऑफ हो जाती है। फिर मैंने पता किया तो पता चला मेरी मम्मी रात को लाइट ऑफ मतलब वो बंद कर देती थी इंटरनेट का मेन स्विच, क्योंकि या तो मम्मी को पता ही नहीं था कि भाई मेन स्विच क्या है, बट मम्मी सारे बटन बंद करे ताकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए। और ये देखिए, बट आपके साथ भी हुआ है क्या, आपके पेरेंट्स भी ये करते हैं? एक ने मैसेज किया भाई पेरेंट्स छोड़ो मैं तो, मेरा भाई भी करता है ये, सॉरी बहन सॉरी उन्होंने लिखा ऐसा। बट यस, सेकंड मैसेज पढ़ते हैं श्रेया का बॉटनी से। वो कहते हैं प्लीज रेंट अबाउट पीपल हु स्टॉप ट्रॉली इन मिडल ऑफ आइल एंड स्टार्ट फुल गॉसिप सेशन। ये बहुत होता है, ये कल भी मैंने पढ़ा था। और एक्चुअली यू नो दे जस्ट थिंक कि वो भाई पूरी आइल जो है वो खुद खरीद चुके हैं, तो वो इतना ब्लॉक कर दे उस तरफ ट्रॉली, इस तरफ खुद खरीदे हुए हैं ना, हिल रहे हैं, बस फोन यूज कर रहे हैं, इधर वो बातें कर रहे हैं। नरेश कहते हैं बुला फ्रॉम मैंगरी, एवरी फीजी इंडियन फैमिली हैज वन अंकल हु बिकम्स पॉलिटिशियंस आफ्टर टू कप ऑफ चाय। वेल ये एक्चुअली फीजी इंडियन नहीं, ये हमारे इधर भी होता है। वी आर सेम हमारे इधर भी होता है कि एक बस चाय पी लो और बैठ जाओ तो भाई साहब पॉलिटिशियन क्या, आप एस्ट्रोलॉजर, आप साइंटिस्ट, आप डॉक्टर, आप सब बन जाते हो। पूजा कहती है फ्लैट बुश से, केतन ऑकलैंड रेंट इज सो एक्सपेंसिव नाउ इवन प्लांट्स नीड फ्लैटमेट्स। दैट्स नाइस, दैट्स यूनिक, बढ़िया आइडिया लगाया आपने। राकेश कहते हैं आखिरी मैसेज पढ़ते हैं व्हाई डू इंडियन डैड्स रिफ्यूज टू यूज जीपीएस इवन दो आफ्टर गेटिंग लॉस्ट 3 times। ये सिर्फ डैड का नहीं है, ये आजकल मैंने देखा है आजकल के भी लोग होते हैं। आई डोंट नो इफ दैट इज देयर ईगो या पता नहीं क्या है, वो बोलते हैं कि नहीं मैं यूज़ नहीं करूँगा। एक तो हमारा दोस्त ही है जो खुद यूज़ नहीं करता है और 2-3 चक्कर भूल भी जाता है, गुम भी हो जाता है। बट थैंक यू फॉर ऑल द मैसेजेस, आप बने रहिए, हम और भी बातें लेके आएंगे। बड़े खास बात यानी कि आपको इस आर में अनाउंस करना है एक वो कोड जो आपको मौका देगा, जितवाएगा। बढ़िया बढ़िया, क्या चीज़, obviously एक रो ऐप के जरिए कॉम्पिटिशन में जहां पे आप जीत सकते हैं एक रिटर्न फ्लाइट टिकट टू फिजी।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: Welcome back. You are listening to Lunch Box. जी हाँ, वैसे और भी बातें करेंगे. बड़े खास चीज आपको बता देता हूँ कि इस आर में आपको गानों के साथ साथ, दमदार गानों के साथ साथ कुछ बॉलीवुड की खबरें भी मिलेगी. बॉलीवुड की खबरों के साथ साथ एक कोड भी दिया जाएगा. बट यस, आपको नेक्स्ट आर में जो पहला दूसरा गाना होगा वो होने वाला है आज के लोकल आर्टिस्ट का, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा. बट चलिए आज कम्युनिटी इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. 17 यानी कल परसों के दिन एक्चुअली संडे को करीबन सुबह 11 से लेकर 4 बजे के बीच आप पहुंच जाइए 378 अरारीमू रोड रमा रमा साउथ ऑकलैंड, जहां पे सपोर्ट कर रहे हैं. दे आर लुकिंग फॉर सपोर्ट फॉर लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट. उसके लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है. श्री वेंकटेश्वरा देवास्थनम चैरिटेबल ट्रस्ट ने भोजन मेला फूड कार्निवल आयोजित किया है. वेल यस, काफ़ी फ्री चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसे फ्री एंट्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांभर भी है. काफ़ी स्टॉल्स होगी वहाँ पे, ज्वेलरी, क्लोथिंग एंड अदर्स, हीना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसिंग कासल, ये सारी चीज़ें आपको ऑन साइट मिलने वाली है. सो मेक श्योर आप वहाँ पे पहुँच जाइए. अगर आपको कुछ स्पॉन्सरशिप्स या फिर स्टॉल्स लगवानी है तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं शिवानी अरोरा को 0218700012 पे. एंड यस, कल के दिन 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे मनाया जा रहा है, यानी कि जब पहली बार फीजी आए थे भारत से, 147 ईयर्स हो चुके हैं उस बात को, वो सेलिब्रेट किया जा रहा है सैटरडे को. कल के दिन मलायोला कम्युनिटी सेंटर 16 वाओकोरी प्लेस मैंगरी में 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच डोर्स जो है वो 4 बजे ओपन हो जाएगी, तो आप वहाँ जाइए. फॉर फ्री एंट्री है. नेटवर्किंग, टी, स्नैक्स, नेटवर्किंग लिए बहुत ही बढ़िया स्पॉट है ये. एंड साथ में 23rd मई को एक बहुत ही बढ़िया इवेंट होने जा रहा है, द ग्रैंड मस्ती नाइट. वाइव मिक्स इवेंट प्रेजेंट्स द ग्रैंड मस्ती नाइट फीचरिंग रीनोन आरजे फ्रॉम फीजी, एस एन जय भैया जी, रॉडी नमन, डांसिंग लेजेंड चार्फर कमिंग टू न्यूजीलैंड आफ्टर 17 ईयर्स. 5 से 6 मसाला मिक्स स्किट्स होने वाले हैं. डुअल वॉइस सिंगर भी हैं मनी डिसूजा, अमेजिंग मॉन्टो मोनिका युवा डांस ग्रुप भी है वहाँ पे, टॉप डीजेस भी होने वाले हैं, और ऑफकोर्स मेरी भी वहाँ पे परफॉर्मेंस है. तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू सी यू गाइस. आप टिकट खरीद लीजिए, टिकट ले लीजिए. हंडर फूड टाउन पापाटोटोए, जेस फ्रेश मार्ट पापाटोटोए, गेट फ्रेश सुपर मार्केट मैंगरी, केस हेयर एंड ब्यूटी सलून मनुरेवा, विकेट चिकन, बॉटनी डाउन्स ब्रांड.

वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं अभी के लिए इस खबर। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज, अरे ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ ली थी, राइट। वेल आई थिंक एक नई न्यूज़ है, उसे पढ़ लेते हैं। ये तो मैं स्क्रॉल करना भूल गया था डाउन, बट यस, अभी आपको लेटेस्ट खबर बताता हूँ, उसके बाद बॉलीवुड की खबर भी बताता हूँ, और थोड़ी देर में आप सभी के बीच फिर से एक अपडेट आएगा फ्रॉम जहाँ पे हम टीम आपका इंतज़ार कर रही है। तो आप डेफिनेटली जाइए, आखिरी जो वाउचर है वो जीत सकते हैं आप। जी हाँ, सो यस, लेट्स टॉक अबाउट, सॉरी, 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यूलिन में है वो, बट अभी की जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि वाइकाटो के ब्यूटीफुल सर्फ्स टाउन रेगलिन अब दुनिया के टॉप सर्फर्स का वेलकम कर रहे हैं। वर्ल्ड सर्फ लीग चैंपियनशिप टूर का बहुत ही बड़ा इवेंट ऑफिशियली शुरू हो चुका है, और अगले 11 दिन तक मनुबे में वर्ल्ड क्लास सर्फिंग एक्शन देखने को मिलेगा। ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड के कंबाइंड मेंस और वुमेन्स चैंपियनशिप टूर इवेंट होस्ट कर रही है। इस कॉम्पिटिशन में दुनिया के बेस्ट सर्फर्स रेगलिन की फेमस लेफ्ट हैंड वेव्स पर कम्पीट करेंगे। लोकल बिजनेसेस और टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफी एक्साइटेड है। कैफेज, अकोमोडेशन और सर्फ शॉप्स को उम्मीद है कि इवेंट से टाउन में थो

0: थाउजेंड ऑफ विजिटर आएंगे और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट भी करेंगे। उसके साथ ही आप कीवी सर्फिंग फैंस के लिए भी एक स्पेशल मोमेंट है जब टैलेंट और 15 इयर्स ओल्ड वाइल्ड कार्ड सर्फर अलानी मोर्स भी वर्ल्ड चैंपियंस के साथ आएंगे। बट यस, चलिए इसके बाद और भी बातें होंगी, बट अभी के लिए बने रहिए।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। पर ये कॉफी ल्यूक वार्म, अ टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
3: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 AM, 11 AM, 1 PM and 5 PM. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
4: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich Tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
5: Auckland, इस वीकेंड $100 स्पेंड करो इन स्टोर एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन और पाओ $20 माइटन गिफ्ट कार्ड सिर्फ सैटरडे एंड संडे। टीज एंड सीज अप्लाई। मोर वैल्यू, मोर प्रोजेक्ट्स, मोर सेविंग्स। जल्दी कीजिए माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।

0: वेलकम बैक चलिए फटाफट से आखिरी चीज सुनने के लिए आपको ले चलते हैं जहाँ पे हमारी पूरी टीम है और पूरी टीम एंजॉय कर रही है, वहाँ पे आपको बुला भी रही है 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यू लैंड फूड फॉर लेस। हेलो पूजा, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड केतन, आप कैसे हो? और क्या प्लान, क्या आप आ रहे हो अभी शो के बाद?
0: बस मैं निकलता हूँ यहाँ पे, तब तक तो शायद ऑफर ही बंद हो जाएगा ना। लेकिन
1: नहीं, ऑफर चल रहा है ना, वही मैं बताने के लिए अभी सोचा सबको कि इसी लिंक में बता दे कि अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था ना कि हम 2 बजे तक रहेंगे, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल्स है आपके लिए, सिंस आज पहला दिन है, दे जस्ट ओपन टुडे, तो ये ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल जो है ये चलते रहेंगे 24th of May, विच इज नेक्स्ट वीक संडे तक आपके पास टाइम है टू कम डाउन एंड एंजॉय। नहीं, हाँ संडे, सैटरडे, 24th कौन सा दिन है यार, कैलेंडर में देख के आता ना, संडे है, ठीक है चलो। हाँ बट 24th of May डेट इज कन्फर्म्ड, आप डे का खुद वर्कआउट कर लो एंड यू कैन कम डाउन टू 13 वेरोनिका स्ट्रीट न्यू लैंड, जहाँ पर फूड फॉर लेस सुपर मार्केट अब खुल चुका है और इनका जो अंडर न्यू मैनेजमेंट ऑपरेशन यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। यू कैन डेफिनेटली एंजॉय दैट, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत कुछ अभी भी आपके पास है टू चेकआउट, आप जरूर आइए, शॉपिंग कीजिए इन द वीकेंड, इफ यू हैव टू डू सम ग्रोसरी शॉपिंग तो यहाँ पे आकर आप चेकआउट कर सकते हैं, दे आर ऑपरेटिंग नाउ।
0: Perfect. Thank you so much, Pooja, for your time, and thank you so much for giving us update about the store. So yes, आप अभी भी जा सकते हैं। Thank you, Pooja. आप अभी भी जा सकते हैं Food for Less 13 Veronica Street, और अभी क्या actually ये संडे तक है ये मार्केट में, यानी कि जो स्पेशल ऑफर मिल रहे हैं ये उन्होंने बढ़ा दिया है until 1 week, यानी कि नेक्स्ट संडे तक। जी हाँ, आप जाइए, जो ऑफर चल रहा था $100 का वो तो मेरे ख्याल से अब नहीं होने वाला है, और उसकी शायद वहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि विनर कौन है। बट यस, आप बने रहिए, एक्चुअली टाइम इज़ हेयर एज वेल, मैं सोच रहा था कि बता ही देता हूँ टाइम, क्योंकि थोड़ा लेट बताना था, बट दैट्स फाइन। आप सभी के लिए अभी मैं कोड बता देता हूँ, जो कि फ्लाई फ्रेंजी, हम फ्लाई फ्रेंजी है, और वो कोड आप फट से डाल दीजिए अभी, इसलिए कि आपके पास 60 मिनट है रोवा पे, और आज का जो कोड है वो है स्माइल, हंसी, जी हाँ स्माइल, SMILE, उसे लिख दीजिए रो ऐप पे, वहां के कोड पे, और रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को ड्रॉ के लिए, जहां पे आप जीत सकते हैं एक रिटर्न एयर टिकट। वूहू!

0: खेड़ा नमस्ते, वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है। मैं हूँ तीन बजे, तीन नहीं एक्चुअली थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है। सो यस, मैं हूँ चार बजे तक। जी हाँ, सैंडी इज ऑन द वे, बट यस ऑफ कोर्स आज सोचा क्यों ना मैं उनका शो करूं, थोड़ी उनको ब्रेक दे दें, बिकॉज शी वॉज देयर इन द सुपर मार्केट। सो यस, आप बने रहिए, अभी और भी खबरें लेके आऊँगा, और भी तरह तरह की खबरें। लेटेस्ट खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बॉलीवुड की खबर लास्ट आर में नहीं दिया तो क्या हुआ, अभी दे सकता हूँ मैं। तो आप कहीं मत जाइए, एंजॉय करो ये बहुत ही प्यारा गाना। शायद
1: कहीं ना ना ना ना तुमको,
0: वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग अरिजीत सिंह की आवाज में, एंजॉय करिए।
2: बचाओ क्या,

0: celebrating local artists.
1: Back your backyard beats.
2: Well, इनका गाना चले आज सेलिब्रिटी जो आज के लोकल आर्टिस्ट हैं उनका जन्नत नाम है इनका और जो सिंगर है वो है क्रिस्टी सहोता एंड जेकब सहोता. जी हाँ ये एक डुओ है, डुओ सिबलिंग है जो काफ़ी टाइम से म्यूज़िक बना रहे हैं, म्यूज़िक पे यू नो प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे गाने रिलीज़ कर रहे हैं आप सभी के लिए. जी यस, ये साउथ ऑकलैंड पोकेकोहे में रहते हैं. सहोता विजन के नाम से इनका इंस्टाग्राम भी है, आप वहाँ पे भी जाके इनको फॉलो कर सकते हैं. और इनका गाना सुनने के बाद इफ़ यू वॉन्ट टू वोट आप MM लिखिए, इनका नाम लिखिए सहोता SAHOTO सॉरी TA विजन SAHOTA विजन और भेज दीजिए 5599 पे. बट ऑफ कोर्स इनका जो एम है वो सिंपल है, वो चाहते हैं जितना हो सके लोगों के दिलों में पहुंचे और ये बताएं कि आपकी लाइफ जो है कितनी भी हार्ड हो बट यस देयर इज ऑलवेज अ वे टू फाइंड द लाइट एंड स्ट्रेंथ. सो यस एंजॉय द सॉन्ग बाय क्रिस्टी सहोता एंड जेकब सहोता.

0: चेतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगी ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: बहुत ही प्यारा गाना था, ये था जन्नत गाना जो कि क्रिस्टी सहोता और जेकब सहोता की आवाज़ें आपने सुना है। बहुत ही प्यारी कंपोजिशन भी थी, खुद गाने बनाते हैं, खुद लिखते भी हैं, खुद गाते भी हैं, सो इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज। सो आप इनको फॉलो कर सकते हैं इनके इंस्टाग्राम पे जाके। बट यस, लेट मी पुट सम लाइट ऑन रोआ ऐप, आप रोआ डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट भी सुन सकते हैं काफ़ी, जैसे कि हम रिवाइंड, उसके बाद 80 दशक के गाने, फीजी बचन या फिर फीजी कीर्तन, चढ़ती कला एंड राहत फतेह अली खान जी के गाने भी आप एंजॉय कर सकते हैं। साथ में काफी पॉडकास्ट भी हैं, हम वहां पे डालेंगे, डालते हैं और डालते रहेंगे। काफी ऐसे इवेंट्स भी हैं जो अभी आने वाले हैं, काफी ऐसे पॉडकास्ट हैं जो काफी एक्साइटिंग है। जी हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको बस डाउनलोड करना है अपने फोन ऐप पे, जी हाँ, आई मीन रोआ ऐप, सॉरी प्ले स्टोर, या फिर अपने दूसरा क्या होता है, अरे अरे अरे क्या था, फोन, सॉरी ऐसा कभी हुआ है आपके जहन में, बहुत ही आसान शब्द है जो एकदम से गायब हो जाए एक चुटकी हो जाए थेनोस की तरह, क्या, ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर, यस दैट्स द वर्ड, यस आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है एंड एंजॉय कर सकते हैं हमारे पॉडकास्ट, हमारा रेडियो एंड ऑफ कोर्स हमारी प्लेलिस्ट भी, और अलग अलग तरह के हम कॉम्पिटिशन्स भी वहां लाते रहते हैं। वैसे यस, बने रही, मैं आईपीएल की खबर लेके आता हूँ, क्या अपडेट रहा है कल के मैच का, उसके बारे में भी बात होगी और साथ में कुछ और चटपटी खबरें, बट यस थोड़ी देर में।
3: Lunchbox with Ketan.
0: मुझे पसंद है लड़का।
3: हम।
4: Ladies and gentlemen.
3: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: where you get your podcast.
1: At IKEA, turn clutter into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at IKEA.co.nz.
2: IKEA.
3: Bunnings has lowest prices nailed.
4: Burnett's 1kg Green Supreme uncoated lawn seed, just $10.89. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है वे सिटी GWM हैवल हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले लिमिटेड टाइम ऑफर टीज एंड सीज अप्लाई फॉर मोर इन्फो विजिट westcityautogroup.nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
9: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pouch 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.

0: या रिप्ले।
1: वेलकम बैक। बॉलीवुड पे थोड़ी नजर डाल देते हैं। अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने अपनी अपकमिंग फिल्म पति पत्नी और वो दो को लेकर इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिए हैं। एक इंटरव्यू में आयुष्मान ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं फिल्म में कंप्लीट ग्रीन फ्लैग हूँ। फिल्म के ट्रेलर के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसकी स्टोरी को अनफिडेलिटी से जोड़ा था, लेकिन आयुष्मान ने क्लियर किया कि मूवी चीटिंग को प्रमोट नहीं करती और उन्होंने ये भी कहा है कि फन कॉमेडी ऑफ एरर्स है और पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है। मूवी में आयुष्मान के साथ सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी भी नजर आएंगी। फिल्म के डायरेक्टर मुद्दसर अजीज ने डायरेक्ट की है और ये पॉपुलर पति पत्नी और वो फ्रेंचाइजी का नया चैप्टर है। वैसे आयुष्मान ने ये भी कहा कि एज अ फैमिली मैन वो ऐसी फिल्म करना पसंद करते हैं जो उनके बच्चे भी कंफर्टेबली देख सकें। फैंस को अब फिल्म की रिलीज का काफी एक्साइटमेंट है। पर ये तो थी उनकी न्यूज, बट अभी कुछ अपडेट्स ले लेते हैं रिगार्डिंग कलेक्शन की हिस्ट्री क्या रही है, अभी हाल फिलहाल क्या नंबर्स क्या रहे। दादी की शादी रिलीज हुई है ओवर द वीकेंड, उन्होंने 3.65 करोड़ की कलेक्शन किया है। उसके बाद मैं एक्टर नहीं हूँ 0.12 करोड़, बाजिंग ख्वाताई 0.002 और उसके बाद कृष्णवतारम पार्ट वन द हार्ट 9.58, राजा शिवाजी 16.45, एक दिन 3.68, यानी कि मेरे ख्याल से फिल्म उतर ही चुकी है, कुछ ज्यादा खास कलेक्शन किया नहीं है। बढ़िया गिनी वेड्स सनी 2 भी कुछ खास नहीं कर पाई इस बार, 1.28 का ही कलेक्शन किया है उस फिल्म ने। बहुत ही मुश्किल है यार, लाइक यू नो यू डूइंग, आई नो दैट एवरीवन वर्क्स सो हार्ड, बट मार्केटिंग इज वेरी क्रूशियल राइट नाउ, आई मीन लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज अगर मार्केटिंग अगर आपके किसी भी प्रोजेक्ट की सही नहीं है तो आपका एक बहुत ही बढ़िया सा प्लेटफॉर्म भी खत्म हो सकता है। जी हाँ, तो बहुत ही स्मार्टली खेलना पड़ता है आज के टाइम पे। वैसे और कौन कौन सी फिल्में हैं जो अभी रिलीज होने वाली है उस पर भी थोड़ी नजर डाल देते हैं। वेल यस, पत्नी और वो दो आज के दिन रिलीज हो रही है, ये आप देख सकते हैं। चांद मेरा दिल 22 मई को, है जवानी तो इश्क होना है 5 जून को, और गवर्नर 12 जून को रिलीज होने वाली है। लेट्स सी कैसा रहता है, कैसा कलेक्शन रहता है इन सारी चीजों का।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
4: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: Well, अभी की लेटेस्ट खबर भी ये है कि ऑकलैंड में एक शॉकिंग साइबर फ्रॉड केस सामने आया है, जहां एक आदमी का मोबाइल नंबर सिर्फ कुछ मिनट में हाईजैक कर लिया गया और उसके बैंक अकाउंट से लगभग $20,000 निकाल लिए गए. इस स्कैम को सिम स्वैपिंग फ्रॉड भी कहा जाता है. Well, रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम को एक वार्निंग टेक्स्ट मिला था जिसमें उसका मोबाइल नंबर नए सिम कार्ड पर ट्रांसफर हो रहा है. कुछ ही देर बाद उनको फोन नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया और स्कैमर्स ने बैंक वेरिफिकेशन कोड्स यूज करके पैसे भी ट्रांसफर कर लिए. गुड न्यूज ये रही कि बैंक ने सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस कर ली और पूरा अमाउंट बाद में रिकवर भी कर लिया. लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सिम स्वैप स्कैम्स न्यूजीलैंड और दुनिया भर में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का कहना है कि लोग SMS बेस्ड वेरिफिकेशन पर पूरी तरह डिपेंड ना करें. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ऐप बेस्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचना बहुत जरूरी है. सिंपल वार्निंग ये है कि अगर आपको फोन अचानक नेटवर्क लूज करे या सिम स्वैप अलर्ट आए तो इमीडिएटली अपने बैंक और मोबाइल प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करें. आज के डिजिटल जमाने पर सिर्फ फोन ही नहीं, आपकी आइडेंटिटी भी टारगेट में आ चुकी है. सो यस, आपको हर एक चीज काफी सोच समझ कर राय लेकर डिसीजन लेना होगा. वैसे यस, बने रहिए. नेक्स्ट इस गाने के बाद आपके लिए लेके आता हूँ IPL की खबर. मृणाली ठाकुर की आवाज में तेरे जैसा तू है.

0: इस भी आप एंजॉय कर सकते हैं और पॉडकास्ट भी. बट यस, लेट मी टेक यू टू आईपीएल के अपडेट्स. आईपीएल के क्या अपडेट्स है? कल बहुत ही बढ़िया हुआ मैच लगा मुझे. शायद मुंबई इंडियंस काम नहीं करेगी, लेकिन फॉर्चुनेटली मुंबई इंडियंस वर्सेस वो मैच जीत चुकी है अगेंस्ट पंजाब किंग्स. और ये पंजाब किंग्स की लगातार 5वीं हार है भाई. टॉप पे होने के बाद वो धीरे धीरे नीचे खिसक रही, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. मुंबई इंडियंस ने पंजाब ने पहले खेलते हुए 200 रन बनाए 8 विकेट पे 20 ओवर में. मुंबई इंडियंस ने 205 बनाए 4 विकेट खोकर 19.5 ओवर में ही. जिस तरह से यूजी चहल ने रोहित शर्मा का विकेट लिया था, लग रहा था कि शायद आज भी लड़खड़ा देगी मुंबई इंडियंस. बट नो, आज मुंबई इंडियंस की जो जिसने भी कहानी लिखी है वो कुछ हट के लिखी थी. नो डाउट 25 रन बनाए उन्होंने, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था. तिलक वर्मा ने बहुत ही बढ़िया खेला, 75 रन बनाए हैं 6 छक्के और 6 चौकों के साथ. जी हाँ, 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट, 227 की स्ट्राइक रेट के साथ. वाओ. वेल यस, आज कौन कौन से मैचेस हैं जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं उस पर भी थोड़ी नजर डाल देते हैं. सनराइजर हैदराबाद के साथ साथ और भी मैचेस हैं, उन पे भी थोड़ी बात है. लखनऊ सुपर जायंट वर्सेज चेन्नई सुपर किंग के बीच आज मैच है. क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? वैसे पॉइंट टेबल की अगर बात करें तो पॉइंट टेबल में अभी हाल फिलहाल आरसीबी इज स्टिल ऑन टॉप और गुजरात टाइटन दूसरे पे. जो चेंजेस आए हैं, आरआर छठे पे आ चुका है, सीएसके 5वें पे, पंजाब 4थे पे आ चुका है, विच इज़ नॉट लुकिंग दैट ग्रेट. बट अभी होप तो है. देखो अभी टॉप 4 पे ही है, बट मेरे को लगता है अभी हाल फिलहाल टॉप 6 के बीच में कंपटीशन हो रहा है. इनफैक्ट डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल भी होड़ में है. बट क्या लगता है आपको? मतलब पंजाब का मैं देख रहा हूँ यार, ये ग्राफ देख रहा हूँ, लॉस बैक टू बैक 5 मैच हारी, अदरवाइज वो टॉप पे होती है. बट किसे सपोर्ट करें आज के मैच के लिए बताइए मुझे 5599 पे.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे
3: हम ड्राइविंग यू होम. द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला.
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहां पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
6: अच्छा आप दिलजीत हो?
5: बताओगे?
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manuko and Pukekohe with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449 and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
7: City flair or mountain air? Enjoy both with Jetstar's Explore Local Sale on now. Plan a New Zealand trip with fares like Auckland to Christchurch from just $63 or Christchurch to Hamilton from just $71.
8: That's choice.
7: It's time to explore your own backyard. Hurry, sale ends midnight 18th May unless sold out. One way, excludes check bags, travel dates and conditions apply. Book now at jetstar.com.
9: So you're trying to eat less meat, but you know Jamie Oliver? Before you spend 45 minutes trying to make a can of lentils taste like dinner or turn a cauliflower into steak, listen to the sound of a BK plant-based Whopper patty sizzling on a flame grill. Smoky, juicy, and effortlessly tasty. Tofu? Burger King, king of plant-based. See burgerking.co.nz for details on our plant-based range.
10: Lace up and lock in, it's game time at Rebel with 30% off New Balance clothing and footwear and 30% off all Adidas adult clothing plus 30% off all Adidas kids shoes. Hurry, these deals and more end Sunday only at Rebel Sports. See online for T's and C's.
11: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. Tech Talk.
2: टेक टॉक में आपका स्वागत है. एक लग्जरी ऑडियो दुनिया में एक नया प्रीमियम वायरलेस स्पीकर काफी डिस्कशन में है. ये फ्यूचरिस्टिक स्पीकर स्पेशली म्यूजिक लवर्स और ऑडियो फाइल्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें पावरफुल डीप बेस और क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी दी गई है.

वैसे इसका डिजाइन स्पोर्ट्स इंस्पायर्ड लिमिटेड एडिशन स्टाइल में लॉन्च हुआ है, जो लग्जरी और टेक्नोलॉजी का यूनिक कॉम्बिनेशन माना जा रहा है। स्पीकर हाई पावर ऑडियो आउटपुट के साथ आता है और वायरलेस स्ट्रीमिंग सपोर्ट करता है, जिससे होम एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस सिनेमैटिक फील होता है। वेल, यस, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आजकल प्रीमियम स्पीकर सिर्फ म्यूजिक डिवाइस नहीं बल्कि होम डेकोर और लाइफस्टाइल स्टेटमेंट भी बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इस फ्यूचरिस्टिक साउंड सिस्टम को म्यूजिक का सुपर कार कहकर डिस्क्राइब कर रहे हैं। सिंपल वर्ड में, टेक्नोलॉजी और लग्जरी का कॉम्बो अब साउंड सिस्टम में भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है।

वेल, एक खास बात लेके आया हूँ। ग्रीन पीज शायद सिंपल वेजिटेबल लगती हो आपको, लेकिन वो सिंपल आपके फायदे के लिए बहुत ही ज्यादा, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये छोटे से पीज न्यूट्रिशन का एक बहुत ही बड़ा पाव हाउस है। एक नए रिपोर्ट के मुताबिक पीज को रेगुलर डाइट में ऐड करने से कम 5 बड़े फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला तो है, पीज प्लांट प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है जो मसल्स और बॉडी रिपेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, इसमें हाई फाइबर होता है जो डाइजेशन और गट हेल्थ को सपोर्ट करता है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि पीज में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो एनर्जी और इम्यूनिटी को बूस्ट भी करने में हेल्प करते हैं। और गुड न्यूज ये है कि फ्रोजन पीज काफी अफोर्डेबल और इजी टू स्टोर ऑप्शंस भी हैं। वेल, यस, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, बट यस, न्यूट्रिशनिस्ट का मानना है कि पीज का जो पास्ता, राइस, करी, सूप या सैलड में इजीली ऐड किया जा सकता है। इसका स्लाइटली स्वीट टेस्ट बच्चों में काफी अच्छा और पसंद भी किया जाता है। सो यस, सिंपल मैसेज ये है कि हेल्दी खाना हमेशा एक्सपेंसिव या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ये सिर्फ मिथ है। कभी कभी फ्रीजर में रखे सिंपल ग्रीन पीस भी आपके हेल्थ के लिए सुपर फूड बन सकते हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया बात। बट यस, आप बताइए मुझे किस खाने में आप पीस को खाना पसंद करते हैं। मेरा फेवरेट तो आलू मटर है, डेफिनेटली मैं उसमें खाता हूँ। प्लस मैं जो हमारे घर पे मैगी बनती है, वो मैगी एक सिंपल मैगी नहीं बनती। ऑफकोर्स मैगी इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि काफ़ी लोग कहते भी हैं, और जो सही भी मानता हूँ मैं, कि मैदा होता है और मैदा ऑफकोर्स इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। तो इसलिए हम क्या करें, थोड़ा सा उसको, मन को तो नहीं मार सकते, तो हम थोड़ा सा उसको हेल्दी बना देते। कैसे, उसमें मटर एंड देन मिक्स वेजीज डाल देते हैं, तो थोड़ा सा स्वादिष्ट तो होता ही है, बट साथ में यू नो हेल्थ के हिसाब से भी थोड़ा बढ़िया हो जाता है। सो यस, आप मुझे बताइए 5599 पे, और किस किस पार्ट में आप पीस खाते हैं मुझे बता सकते हैं। बढ़िया साहब, बने रहिए, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं हूँ यहाँ पे 4 बजे तक। तब तक के लिए एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना जिसका नाम है गुंगट की।

0: परिवर्तन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
5: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
4: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
5: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
6: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: Weekdays 6 to 10 AM.
7: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
8: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
7: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
8: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
7: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
9: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
10: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
11: Indelible Homes, your building expert.
12: Farmers Mega Home Sale is on now with all Sleepyhead beds half price. Super deals on chiropractic bed sets and mattresses from $999. And super deals on all Balance Plus Queen bed sets and mattresses. Shop Sleepyhead beds at Farmers. Conditions and exclusions apply.
13: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. On now at Auckland Showgrounds. Tickets at boatshow.co.nz. You gotta go.
14: टाइम हो चुका है दिन के ठीक तीन।
2: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
15: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. The police commissioner has offered support to staff at the scene of a house fire where a child has died in Christchurch. Four others were taken to hospital from the blaze in Whitehall Street. One is critical. RNZ reports that Richard Chambers says he was already in the city, so visited the site last night, adding tragedies are not easy for police staff. The government is being urged to immediately halt changes to the Education and Training Act. The Waitangi Tribunal has found proposed amendments to be in breach of the treaty. It says the Māori Crown relationship is at risk as the strength of treaty obligations would be downgraded. A serious crash has closed a section of State Highway 1, Main South Road in Canterbury. Injuries are reported at the site just north of the Rakaia Bridge. The area is likely to be blocked for some time. Thousands of spectators are set to descend on Waikato's Raglan for one of the world's top surfing competitions. It's the first time the World Surf League Pro has been held in New Zealand. Waikato District Mayor Axel Beck says the event also attracts millions of viewers online.
16: There's a bit of a long tail on this too. I'm sure some of those surf enthusiasts are going to want to come and ride this amazing wave.
15: And sticking with the surfing, all three Kiwis have been knocked out of the World Surf League event in Raglan in the first round. 15-year-old local wildcard Alani Morse was beaten by 13th seed Betty Lou Sakura Johnson of Hawaii. Billy Starmond, who also lives in Raglan, was beaten by an Australian, while Taranaki's Tom Butland was knocked out in his heat. And in golf, Ryan Fox is tied for 34th and Daniel Hillier 49th after the first round of the US PGA in Pennsylvania.
2: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update, brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
14: वेदर के हाल चाल जान लेते हैं। आज मैक्सिमम टेम्परेचर 18 डिग्रीज रहने वाला है एंड 7 डिग्रीज आज मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। 0% चांस है बारिश के आज, लेकिन आज का सनसेट होगा 5:24 PM पे।
2: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
17: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: कॉफी ब्रेक विद सैंडी।
14: Welcome back. You are listening to Coffee Break Now. The Lunchbox Show हो चुका है खत्म। अभी आ चुके हैं हम कॉफी ब्रेक में। हाथ में मेरे कॉफी है और कॉफी जैसी बातें भी करेंगे जो थोड़ी लाइफ से रिलेटेड ना हो, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, स्ट्रेस ना दे आपको, और समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाली बातें करेंगे यहाँ पे। जी हाँ, तो बने रहिए, सुनते रहिए आज के इस कॉफी ब्रेक में अंटिल 4। मैं यहाँ पे हूँ, सैंडी रोज़बे विल बी बैक फॉर द ड्राइव शो फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स।

Welcome back. You are listening to Coffee Break. Well, a coffee interesting baat ho rahi hai ya fir ghatna hui hai India mein ya fir jo thoda sa excitement bhi kar rahi hai. Excitement ke saath saath thoda tension bhi bada rahi logo ke ki are we undercover already or are we under threat. ये चीज़ काफ़ी हो रही है. काफ़ी लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि किसी पता नहीं उस पर मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए. मेरे ख्याल से नहीं मानना चाहिए बट काफ़ी लोग बोल रहे हैं 2026 में कुछ भी हो सकता है और अब तो दिख भी रहा है बिकॉज 2026 के देखो मिड में पहुंचे हैं और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है, एक रिपोर्ट भी लॉन्च कर दी है अबाउट UFO के बारे में. जी हाँ, तो वो रिपोर्ट डाली है लेकिन उसके बाद अगर आप नोटिस करें उससे पहले कुछ भी आपको उड़ती हुई चीज़ दिखती थी आप उस पर ध्यान नहीं देते थे. एंड यू मस्ट बी फीलिंग कोई प्लेन उड़ रहा होगा या फिर कोई ड्रोन होगा या फिर वर्स्ट केस क्या होगा, एक सैटेलाइट होगी जो आपस में घूम रही है क्योंकि स्पेस में इतनी सारी सैटेलाइट आ चुकी है आजकल. बट उस रिपोर्ट के बाद जाने अनजाने चाह के भी आप का ध्यान जो है अब UFO की तरफ ही जा रहा है. यानी कुछ भी ऐसी अनआइडेंटिफाइंग चीज देखते हो स्काई पे तो आपका ध्यान जो है वहीं पे जा रहा है. वेल, ये मैं बात इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज एक अजीब सी घटना हुई है. एक्साइटिंग भी बोल सकते हैं, मेरे हिसाब से तो एक्साइटिंग है बट थोड़ी डर वाली भी है क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि क्या सचमुच हम एक स्पेस वॉर के बीच हो सकता है या ऐसे काफी चीजें हो रही है. बट ऑफकोर्स ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है बिकॉज 5 मई की रात को लगभग 9 बजे इंडिया के आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसने सबके होश उड़ा दिए. दिल्ली, इंदौर या फिर लखनऊ, ये काफ़ी जगह, इनके अलावा और भी शहर थे जहाँ पे लोगों ने आसमान पे अजीब सी चमकती हुई लाइट को तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखा और ऐसा लग रहा था, मान लो पहले तो लगा कि लोगों को ड्रोन्स हैं ये सब है, बट बाबू ड्रोन्स इतनी जल्दी अलग अलग शहरों के बीच सफ़र नहीं कर सकते और ये स्टारलिंक की सैटेलाइट्स भी नहीं है क्योंकि वो एक सीधी लाइन पे वॉक करते हैं जैसे कि हम परेड करते हैं वैसे, बट ये पूरी एकदम शैटर्ड जैसी थी, अलग अलग स्पेस में थी, अलग अलग फैली हुई थी और वही चीज़ आसमान में दिखी है. अब तक वैसे IMD या डिफेंस अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई ऑफिशियल सफाई तो नहीं आई है जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पर UFO और एलियंस की बहस छिड़ चुकी है. वेल यस, आप मुझे बताइए, आपने भी ये डेफिनेटली रील देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो एक बार सर्च करिए. नॉट मैं ये नहीं चाहता कि आपके जहन में डर बढ़े या ऐसा कुछ हो, इट्स जस्ट टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड कि ऐसा कुछ हुआ है और मैं तो कहूँगा थोड़ा सा उस पर रिसर्च भी करिए एंड फाइंड आउट करिए कि एग्जैक्टली वो क्या था. बस हम भी वही उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं. हाँ, होपफुली देखते हैं क्या होता है यार. मुझे तो लग रहा है शायद UFO ही है. लेट्स सी क्या होता है यार.

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel. Or tuck into beef enchiladas, tender pulled beef, soft tortillas and bright tangy sauce. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
2: Forget counting sheep, count the savings at Briscoe's with a huge 25 to 60% off the entire store. Plus, shop 60% off Cozy Home Super Savers, like all Zip Electric Blankets 60% off. Hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
4: Popeyes is turning two, but you get the presents. Their limited time birthday box is packed with two drumsticks, six nuggets, and regular Cajun fries for just $11.90. Celebrate 2 years of world famous Louisiana fried chicken at Popeyes.
5: Love that chicken from Popeyes.
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
8: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
10: हाँ, अच्छा
9: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
10: मिसेस सिंह,
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz.
12: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
13: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
12: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
14: वेल, हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात करें तो आज से करीब 125 साल पहले न्यूजीलैंड में पहला मोटरिंग ऑफेंस रिकॉर्ड हुआ था और उस वक्त स्पीड लिमिट सिर्फ और सिर्फ 4 miles per hour थी, यानी कि लगभग 6.5 kilometers per hour. 15 मई 1901 को क्राइस्टचर्च में निकोलस ओट्स नाम के आदमी को ओवर स्पीडिंग के लिए कोर्ट में पेश किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मोटर कार इतनी फास्ट चल रही थी कि रोड पर खड़े घोड़ों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था. विटनेस ने कहा कि गाड़ी करीब 10 miles per hour की स्पीड में जा रही थी, जो उस जमाने में डेंजरस माना जाता था. थोड़ा फनी साउंड कर रहा है कि भाई 10 की क्या ही स्पीड होती है, बट उस टाइम के हिसाब से जब कार जो है नई नई मार्केट में आई थी, ऑफ कोर्स फॉर यू गाइस, ऑफ कोर्स कोई जो नहीं जानता उस चीज़ को तो वो तो डेफिनेटली डरेंगे ही. बट कोर्ट ने निकोलस पर £1 का फाइन लगाया. ये 125 साल पुरानी बात है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त पूरे कैंटरबरी रीजन में सिर्फ 7 motor vehicles ही थी, और आज जब हाईवेज पर 100 या 110 किलोमीटर की स्पीड पर आप चलाते हैं कार तो भी आपको कम लगता है. सोचिए, एक तो वक्त ऐसा भी था जब 10 माइल पर आर की स्पीड भी शॉकिंग मानी जाती थी.
12: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
15: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
16: मैं लाऊं अपना ए गेम.
12: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है मालूम है ना? मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it. Hey.

Well, रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर द रिवेंज में बड़े साहब का टेरिफाइंग लुक फैंस के बीच काफी डिस्कशन में है और अब उस प्रोस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के बिहाइंड द सीन्स डिटेल सामने आए हैं। एक्टर दानिश इकबाल को इस रोल के लिए पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने में रोज 8 से 10 घंटे लगते थे। नेशनल अवार्ड विनिंग प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह डिसूजा ने रिवील किया है कि कैरेक्टर को दो अलग वर्जन क्रिएट करने गए और एक पावरफुल और एक स्टाइलिश यंगर बड़े साहब और दूसरे वीक और एजेड वर्जन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैवी सिलिकॉन प्रोस्थेटिक्स विग्स रिंकल्स डार्क स्किन टेक्सचरिंग और डिटेल्ड मेकअप टेक्निक्स का यूज हुआ है। दानिश इकबाल ने भी बताया कि हैवी मेकअप के साथ एक्टिंग करना बहुत चैलेंजिंग था, कभी कभी उन्हें 10 से 12 घंटे तक प्रोस्थेटिक्स में रहना पड़ता था, लेकिन बिना प्रॉपरली खाए पिए ये ज़्यादा मूवमेंट उनके लिए दिक्कत दे रही थी, बट ही नेल्ड इट राइट। वेल, फिल्म में बड़े साहब का कैरेक्टर एलिजली इंडिया के जो एक्स तो नहीं बोलूंगा, अभी भी है, ऑफकोर्स कोई न्यूज़ नहीं है, कोई बोल रहा है नहीं है ऐसा है, तो डॉन भी कहते हैं उन्हें, उसे इंस्पायर्ड बताया गया है और फैंस को दानिश इकबाल का इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। वैसे अगर सिंपल शब्दों में कहें तो बॉलीवुड में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, मेकअप और प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट्री भी अब हॉलीवुड लेवल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती नजर आ रही है।

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

वैसे इंडियनापोलिस 500 के लिए न्यूजीलैंड के यंग रेसिंग स्टार्स एक बार फिर हेडलाइंस में हैं। मेरा नाम केतन है, आपका स्वागत करते हैं कॉफी ब्रेक में। वैसे इस कीवी ड्राइवर मार्कस आर्मस्ट्रांग ने बताया कि पिछले साल के क्रैशेस और डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद वापस कमबैक करना इमोशनली काफी टफ था, लेकिन अब वो एक नए कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया की सबसे आइकॉनिक मोटर रेस में उतरने जा रहे हैं। लास्ट ईयर क्वालिफाइंग के दौरान मार्कस आर्मस्ट्रांग का हैवी क्रैश हुआ था जिसके बाद उन्होंने स्ट्रेचर्स पर ट्रैक से ले जाना पड़ा वहीं स्कॉट मैकलफ्लिन और स्कॉट डिक्सन को भी हार्ट ब्रेकिंग सेटबैक्स फेस करने पड़े।

Well, that's all for today. But before I leave, मैं लेटेस्ट खबर भी बता देता हूँ. कैंटबरी में स्टेट हाईवे 1 पर एक सीरियस क्रैश के बाद बड़ा इमरजेंसी रिस्पांस देखने को मिला. राखाइया के पास बैंक साइड एरिया में एक सिंगल व्हीकल एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद दो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स और मल्टीपल एम्बुलेंसेस को तुरंत सीन पर भेजना पड़ा. पुलिस के मुताबिक क्रैश नॉर्थ रकाइया रोड पर SH1 इंटरसेक्शन के नियर हुआ और इंसिडेंट में इंजरीज रिपोर्ट हुई है. सीरियस क्रैश यूनिट भी इन्वेस्टिगेशन के लिए साइट पर पहुंच चुकी है. हाटोहोन सेंट जॉन ने कंफर्म किया है कि इमरजेंसी रिस्पांस में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर एम्बुलेंसेज और फर्स्ट रिस्पांस टीम शामिल थी और अथॉरिटीज ने मोटरिस्ट को एरिया अवॉइड करने और अल्टरनेट रूट्स यूज करने की एडवाइस भी दी है, क्योंकि हाईवे का हिस्सा काफी देर तक क्लोज रहता है. NZTA ने भी वार्निंग दी है कि SH1 रकाइया ब्रिज के नॉर्थ साइड पर बंद है और ट्रैफिक डिलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फिलहाल इंजर्ड लोगों की एग्जैक्ट कंडीशन ऑफिशियल रिलीज नहीं हुई है. पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है. अगर आप कैंटबरी रूट पर ट्रैवल करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट्स भी जरूर चेक कर लें, ताकि आप अपने गोल पे पहुंचने पे देर ना करें. सो यस, दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग. बट यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू ऑन मंडे. यार बहुत ही खूबसूरत दिन हो, यही हमारी आशा है मंडे भी. बट यू गाइस टेक केयर, एंजॉय द वीकेंड, एंड ऑफ कोर्स AI से जितना रूबरू हो सकते हैं उतना होइए, बिकॉज हर जगह AI ही चल रहा है. इनफैक्ट आज के टाइम पे आप जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो AI पे डिपेंड होते जा रहे हैं. तो इट्स गुड that you don't feel that AI is your enemy, but just think it as AI can be a boost for your any kind of projects. So yes, learn and move forward. So yes, that's all for today. I'll see you on Monday. Bye-bye, take care. Love you.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: Win 135 grand in prizes from Moody.
3: Mainly clear for Auckland with a low of 9 degrees overnight. Out of town on the northern to Constellation Drive, just under 40 minutes at the moment. We're heavy getting out of town. Also heavy Northcote points to Ismond Road and slow north to Constellation Drive. And to Silverdale, we're slow Albany to Snow Planet, just under an hour. On the southern, an hour to Monaco. We're heavy to Mount Wellington and heavy on and off from there. The southwestern, we're heavy south from Nielsen Street.
2: Golden tickets are hidden in Moody plant protein balls in supermarkets. T's and C's apply.
4: Tiger Bar and Restaurant in Soho Hotel, Mount Roskill. आए और enjoy करें इनका sophisticated dining experience, जहां पर आपको तरह तरह के flavors मिलेंगे. Creative Asian fusion dishes से लेकर zesty seafood तक, साथ में refreshing cocktails, सब कुछ एक बहुत ही elegant और stylish अंदाज में. ये open है for breakfast, lunch and dinner. Close to Auckland CBD and minutes away from the airport. Tiger Restaurant Bar in Soho Hotel, Stodart Road, Mount Roskill. Visit Tiger at soho.co.nz.

0: Get more bang for your buck this weekend at Mitre 10. Score yourself a $20 gift card for every $100 you spend in-store or online. Auckland stores only. Conditions and exclusions apply. You won't want to miss this on the 16th and 17th of May at Mitre 10.
1: Purani gaadi aur mehenga fuel kab tak chalega? Switch to Leap Motor C10 or B10 Ultra Hybrid or Electric. Sirf 44,990 plus on-road se shuru. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane or Botany. T's and C's apply.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
4: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Good afternoon, I'm Bridget Hastie with the latest at 4. A crash that has closed State Highway 1 south of Christchurch is causing major traffic delays. St John sent two helicopters to the scene near the Rakaia Bridge, with three people taken to hospital, one critical. Detours are being set up. Some positive stats from the latest food price figures. They stayed flat overall between March and April, and the 2.6% rise in the last 12 months to March was the slowest increase in a year. Poultry and fish prices barely moved over a month, while fruit and veg actually fell. David Seymour has dismissed today's school strike for climate as wagging to make a political point. The Associate Education Minister says the students would make a bigger difference by going to class.
6: Staying in school and learning some maths and science is the most powerful thing you can do to be able to solve the problem in the future.
5: Electric Ave in Christchurch has hit new heights, breaking a number of records. The annual music festival was held at Hagley Park in February. Christchurch NZ's Anne Newman says this year blew the others out of the water.
7: Almost 50,000 unique attendees. 56% of those came from out of the region. The visitor spend close on $14 million, up 33% on last year.
5: To rugby with Shift 4, the Chiefs aren't taking the Highlanders lightly in tonight's Super Rugby Round 14 clash in Hamilton. Captain Luke Jacobson says the Highlanders have plenty of ability across the park.
8: Yeah, they'll be a desperate team, and desperate teams are dangerous. They've definitely got a lot of firepower.
5: Kickoff is at 7. And Auckland FC are away to Adelaide in the second leg of their men's A-League semi-final tonight. Kickoff at 9:35.
4: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Weather update, brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: गुड आफ्टरनून. वेदर का हाल आज काफी कमाल. ब्यूटीफुल डे इन आवर सुपर सिटी. फील्स लाइक 16 डिग्री, 16.4 एक्चुअल टेम्परेचर. ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 8 डिग्रीज टुनाइट. 5:24 पे आज होगा सनसेट.
4: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्पी,
10: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
11: ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस मोनाको एंड पुकेकोई, विद स्लीपी हेड क्वीन मैट्रेस फ्रेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 449, एंड जिमी टेलर एंड टीम फ्रॉम वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप, द होम ऑफ GWM हैवल एंड ओमुडा जेकु.
4: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
12: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
9: आज है 15 मई, 4:03 और ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो गया है. वेलकम टू द ड्राइव शो. हाय सैंडी.
13: हाय रिजबे. गुड आफ्टरनून.
9: Good afternoon. कैसे हो आप? Yes, Andy. How was your day today?
13: Good. Splendid. काफी busy. Yeah, काफी busy day था. And thanks to Ketan. And special thanks to Ketan. आज Ketan ने यहाँ पे coffee break संभाला. And you know, क्योंकि हम गए हुए थे Food for Less New Lane में. And
9: वो तो 2 बजे खत्म हो गया था लेकिन.
13: हाँ, तो उसके बाद थोड़ा सा break बनता था.
9: अच्छा,
13: ना वहाँ से आने में
9: आपको.
13: फिर time भी लगता है.
9: Right.
13: तो yeah, इसलिए so Ketan was like कि चक्कर ही नहीं है कोई, मैं संभालता हूँ.
9: क्या बात है यार. वेरी नाइस। तो चलो आज ड्राइव शो में फ्राइडे का दिन है और आज माधुरी दीक्षित अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। अगर आप भी माधुरी दीक्षित के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हो, आपको भी ढेर सारी बधाई आज के दिन की।
13: वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड थैंक यू टू द लिसनर्स रुज़बे जो हमें सुनने के बाद वहां पे पहुंचे थे।
9: हां, फूड फॉर लेस अंडर न्यू मैनेजमेंट जहां पे आप आए थे वेरोनिका स्ट्रीट पे। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके वहां पे, काफी बातें हुई एंड काफी लोगों ने बोला कि हम कॉल नहीं करते, हम मैसेज नहीं करते, लेकिन हम सुनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, वी ट्रूली अप्रिशिएट। एंड फ्लाई अवे फ्रेंजी में रिटर्न
13: आज लास्ट कोड है,
9: लास्ट कोड है आज।
13: या आज के डे का ही नहीं, लाइक टोटली लास्ट कोड है आज तो।
9: लास्ट कोड फॉर फ्लाई अवे फ्रेंजी प्रमोशन जहां पे वन रिटर्न एयर टिकट फॉर फिजी आपके नाम हो सकती है एंड वी विल सी हु इज गोना बी दैट विनर जिसने मोस्ट कोड्स डाले होंगे।
13: या लेट्स सी, सो विनर का भी पता चलेगा आपको नेक्स्ट वीक में, लेकिन फिलहाल तो आपको आज पार्टिसिपेट करने का टाइम मिलेगा।
9: तो ये इसमें रैंडमली जिसने कोड डाला है वो सिलेक्ट हो सकता है ना?
13: या
9: ऐसा जरूरी नहीं कि सारे कोड्स डाले हो।
13: या इट्स अ सिस्टम हाउ इट वर्क्स,
9: यू कैन पुट योर तुक्का एंड यू कैन पुट योर कोड इन।
13: या
9: 5 बजे के बाद आज कोड आएगा।
13: तो
9: दिलजीत दोसांझ टू स्टार्ट ऑफ दिस आवर एंड टू स्टार्ट ऑफ द ड्राइव शो विद द सॉन्ग कॉल्ड मोरनी।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपको भी अगर हमारा प्रोफाइल बिल्कुल पसंद नहीं आया तो हमें एक और मौका दीजिए हमें रिडीम करने के लिए और सैंडी अब रिडीम करेगी हमें विद दिस न्यूज आर्टिकल.
1: ये जो न्यूज है, रिसेंट रिपोर्ट आई है कि न्यूजीलैंडर पेड अराउंड $20 million इन आफ्टर पे लेट फीस ओवर द पास्ट ईयर.
0: सारे न्यूजीलैंडर्स मिला के
1: न्यूजीलैंडर्स
0: 20 million इन आफ्टर पे वाले लेट फीस में
1: लेट फीस ओवर द पास्ट ईयर.
0: वाओ.
1: सो व्हिच हाइलाइट्स कि कितना हैवीली कीवीज जो है दे रिलाई ऑन बाय नाउ पे लेटर.
0: आप करते हो बाय नाउ पे लेटर वाले एप्स मतलब या सर्विसेज?
1: मैं बहुत कम, जैसे फोन हो गया, फोन मैंने इस वजह से लिया हुआ है, मतलब वो भी नॉट बाय नाउ पे लेटर बेसिकली.
0: वो तो आपने प्लान पे लिया होगा.
1: या प्लान पे लिया है
0: या कार्ड पे लिया है?
1: कार्ड पे लिया है.
0: अच्छा, क्रेडिट कार्ड पे लिया है?
1: नो, इट्स अनदर कार्ड.
0: कोई हां, एक कोई अलग कार्ड होता है जिसमें वो ही सेम है, बाय नाउ पे लेटर ही टाइप है ना, वो भी
1: वही टाइप है, बट इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इट.
0: दो साल का मिलता है टाइम आपको ना उसमें.
1: या
0: और
1: इंटरेस्ट फ्री, वो आपको टाइम मिलता है.
0: इंटरेस्ट फ्री ये तो सब,
1: एक साल तक इंटरेस्ट फ्री, लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स भरना पड़ेगा.
0: एक साल के बाद इंटरेस्ट है?
1: या
0: उफ, कितना इंटरेस्ट होता है और पता है परसेंट?
1: नहीं याद मुझे.
0: ये देखो यही प्रॉब्लम है ना, मोस्ट लोगों को पता ही नहीं है कि इंटरेस्ट कितना पे करना है बाद में.
1: तो लेकिन उससे पहले मेरे को खत्म करना है ना, उस हिसाब से सेटिंग की हुई है.
0: अच्छा, सेटिंग करके रखी है.
1: या पेमेंट्स की उस हिसाब से सेटिंग करके रखी है.
0: ट्रैक पे हो आप?
1: या सो फार, जब नहीं ट्रैक पे होती फोन आ जाता है.
0: किसका फोन आता है?
1: क्योंकि मैंने ऑटो सेटिंग्स नहीं करके रखी ना, तो मेरे को ऐसा एवरी टाइम जाके पे करना होता है. अगर रह जाए तो कंपनी इज गुड, आपको रिमाइंडर देती है
0: कि तुमने रह गया, तुम्हारा
1: पेमेंट रह रहा है, तो मतलब इट्स क्लोज बेसिकली.
0: अच्छा, दैट्स गुड. आपसे जानना चाहेंगे 0800 004866, पिछले एक साल में हैव यू आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द 20 million? क्या आप भी बाय नाउ पे लेटर ये फैसिलिटीज यूज करते हो? और अगर यूज करते हो तो क्या आप भी उसमें कभी आपको लेट पेमेंट फी देनी पड़ी है ऐसे चीजों में?
1: मेरे को लगता है काफी लोग इसके साथ रिलेट करेंगे, बिकॉज आजकल काफी चीजें चाहिए होती है एंड हर किसी का बैंक बैलेंस इतना नहीं होता है कि भाई जाके अभी तुम एफपॉस कार्ड के साथ ऐसा खरीद लो. सो काफी चीजें, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग थिंग्स लाइक टीवी भी हो गया. काफी लोग जैसे टीवी खरीदना है किसी को, सोफा खरीदना है किसी को, फर्नीचर का कुछ भी है ऐसा है खरीदना है, तो कई बार करना पड़ता है ये सब ना.
0: अच्छा, तो आप बताइए, आप भी शेयर कीजिए कि ऐसी कौन सी चीजें जो आप करते हो. मैं तो आजकल देख रहा हूँ कि हर एक कोई भी चीज के ऊपर बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन अवेलेबल है.
1: छोटी छोटी चीजों के ऊपर मेरे को लगता है अवॉइड करना चाहिए. सो स्पेशली फॉर द स्मॉल थिंग्स लाइक ग्रोसरीज, बिकॉज ये जो रिपोर्ट है रुजबे, जो फाइनेंशियल मेंटर्स है, इनका कहना है कि पीपल आर नाउ यूजिंग बाय नाउ पे लेटर for things like groceries, fuel and nappies.
0: Oh wow.
1: So it's not just fashion or gadgets anymore. तो लोग जो रोज की चीजें हैं इसके ऊपर भी कर रहे हैं, that shows a struggle basically. So जो रिसर्च है ये बताती है कि यंग यूजर जो है don't even view buy now pay later as a debt, which can lead to overspending.
0: Oh, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये
1: facility
0: एक है.
1: Yeah. So many users pay on time and points out the late fees are capped in New Zealand. So about 1 million Kiwis are using buy now pay later services.
0: और 1 million Kiwis ने contribute किया 20 million.
1: $20 million.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Wow.
1: How many of you, जैसे रुजबे ने पूछा, आप यूज करते हैं क्या बाय नाउ पे लेटर, BNPL जिसे कहते हैं?
0: ओ, BNPL कहते हैं इसको.
1: या अच्छा. तो आप क्या BNPL का कोई भी फॉर्म हो सकता है वो, आप क्या यूज करते हो? और अगर आप यूज़ करते हो तो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो? आर यू यूजिंग फॉर एवरीडे थिंग्स, जैसे ग्रॉसरीज हो गई, ये सब चीज़ों के लिए, या फिर आप बड़ी चीज़ों के लिए? व्हाट अबाउट यू रुजबे?
0: नहीं, मैंने आज तक नहीं कभी यूज़ किया.
1: कभी यूज़ नहीं किया?
0: नहीं,
1: मतलब उसका कोई और फॉर्म भी नहीं, कार्ड भी नहीं, कोई इस
0: कभी
1: से
0: नहीं, कभी नहीं.
1: नहीं.
0: क्योंकि मुझे लगता है ऑनेस्टली कि ये जो चीज़ें हैं ये सब गिमिकी होती है मेरे हिसाब से. ये मेरा टेक है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो यूजुअली आप जो एडमिन फी या जो पे करते हो, इट इज लाइक योर इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग बेसिकली. ऐसा मेरा टेक है. बट हाय, आपका भी स्वागत है.
1: हेलो
0: जी. हाय.
1: यस हाय, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम आ गया होगा, नाम में क्या रखा है?
0: नाम में क्या रखा है बताइए आप.
1: हाँ जी बताइए.
2: हाँ जी, मैं यूज करता हूँ और हमारे बिजनेस में ये प्रमोट भी किया जाता है क्योंकि वी सेल बिग टिकट आइटम्स, सो इट हेल्प्स पीपल. जो बड़ी परचेज होती हैं वो इंडस्ट्री रहती है मोस्टली, तो ब्रिजेस अ गैप. तो उसमें जैसे बता रहे थे आपने फोन लिया उसके ऊपर, तो अप फ्रंट बड़ा अमाउंट पे करना हमेशा चुपता है, इवन दो यू कैन बट वो चुपता है, बट आपको इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है तो व्हाई नॉट, अगर आप डिसिप्लिन है तो. जो मैंने देखा काफी जो इंडियन कम्युनिटी है दे आर क्वाइट डिसिप्लिन, वो उसको यूटिलाइज करते हैं अच्छी तरह.
1: ओके,
2: तो रूल्स में इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, गिमिक नहीं है भाई,
1: अगर आपको पता है कि यू नो इसके आगे जाएंगे तो खतरा है, वो खतरे से पहले पहले.
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग. हाँ बोलिए.
2: एक साल के बाद जो इंटरेस्ट फी है मोस्टली 22% इंटरेस्ट
0: जो क्रेडिट कार्ड का फी होता है. बढ़िया, थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच
0: जी. तो आप भी यहाँ पे कॉल करके आपके व्यूज भी शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है ये, एंड हाउ मच यू थिंक इट इज यूजर फ्रेंडली फॉर यू,
1: और आपने किन चीजों के लिए यूज किया है, लाइक बाय नाउ पे लेटर अगर आपने यूज किया है, किस चीज के लिए आपने यूज किया है, घर की किसी चीज के लिए किया है या फिर किस चीज के लिए आप करते हैं यूजली, इसको यूज कैसे करते हैं, वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं.
3: Ladies and gentlemen, unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Sandy and Rusby on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie. Tender, flaky fish, buttery bechamel, and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
2: TradeDepot.co.nz. Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
3: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
4: It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
5: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
6: Kyun? Kya hua?
5: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya, no response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
7: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
8: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
9: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
8: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
10: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
11: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
12: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
0: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
13: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए यहाँ पे हम एक से एक गाने लेकर आते हैं और रिंगटोन्स भी कभी कभार. हाय, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे लिसनर. हाय, नमस्कार, स्वागत है आपका.
14: नमस्कार. जय जय भाई बोल रहा
13: है. हाँ जय भाई, बोलो.
14: अच्छा, मैं वो टेंस पे तो नहीं लिए चीज कभी, जैसे पायलट, लेकिन मेरे पास एक अमेरिकन एक्सप्रेस चार्ज कार्ड है. और उस पर पॉइंट आता है. एक बार तो चार जन के ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट से भेजे.
15: ओके.
14: मेरे वाइफ, मेरे ग्रैंड सन. और अभी लगभग 133,000 पॉइंट शेयर हो गया है.
13: 133,000.
15: वाओ.
14: हाँ
13: भाई, डिपॉजिट निकल जाएगा इस पे तो.
14: डिपॉजिट नहीं, शायद अमेरिका का टिकट थ्रू हो जाएगा ना.
13: अमेरिका का टिकट मतलब क्या, कितना कितने टिकट निकल आएंगे? 133,000.
14: हाँ, ये एक टिकट
13: देगा, वो रिटर्न टिकट. बस एक ही
15: रिटर्न टिकट मिलेगा लेंगे ना ये, या फर्स्ट क्लास लेंगे?
14: फर्स्ट क्लास नहीं, नॉर्मल मिलेगा, लेकिन टिकट फ्री रहेगा.
13: अरे क्या बात है.
14: पॉइंट पॉइंट जमा हुआ है उस पर
15: रहेगा. ओके, कूल, वेरी गुड, गुड ऑन यू.
14: जितने चीज खरीदो अमेरिकन एक्सप्रेस पर डोरा पर एक पॉइंट आता है ना.
13: अच्छा, okay, तो इनवॉइस आपको भेजू फिर.
15: प्रमोशन तो हो गया ना यहाँ.
14: हाँ, तो अगर कोई अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड चार्ज कार्ड सिस्टम पे होगा तो वो जानता है कि कैसे पॉइंट आता है.
13: हाँ, वी आर नॉट गिविंग एनी फाइनेंशियल एडवाइस. हम तो यहाँ पे कोई इसको भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं. ये तो बस आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो हमारे साथ, सही ना? और अगर आपको कोई केस वेस करना है, कुछ करना है, तो जय भाई इनका नाम है, आप सीधा इनको ही
15: अक्सर यहाँ पे कॉल करते हैं. आवाज तो आप जानते हैं.
13: हाँ, नहीं हम क्या, हमारे साइड से
14: फोन नंबर मत देना भी.
15: अरे तो फिर दे रहे हैं, कैसे कांटेक्ट करेंगे
13: केस कैसे करेंगे आपके ऊपर?
14: नहीं नहीं, आपके पास जाएंगे तो आपसे मेरे पास.
13: अच्छा, ऐसा बोल रहे, ठीक है, चलो
15: ठीक है. थैंक यू जय
13: थैंक यू सो मच यार.
14: ओके.
13: अच्छा, तो इन्होंने भी ये प्रमोट कर लिया एक बिजनेस जो हमारे साथ सेल्स नहीं कर रहा है. काशी का सुनेगी तो बहुत बुरा लगेगा उसको भी.
15: एनीवे, वैसे आज 5 बजे के बाद हमारे पास कुछ लोकल आर्टिस्ट भी शामिल हो जाएंगे रुजबे. आज बैकयार्ड बीट्स में वी विल हैव सहोता विजन से क्रिस्टी एंड जैकब सहोता.
13: यस, बैकयार्ड बीट्स में हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं, यहाँ के जो टैलेंटेड बंच है, इनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका प्यार चाहिए इन्हें. आज 5 बजे के बाद उनसे भी बातें करेंगे और उनका क्रिएशन भी सुनेंगे. हमने पिछले साल भी उनका गाना बजाया है, काफ़ी बार बजाया. तो यस, आज 5 बजे के बाद उनसे बात होगी. थोड़ी देर में और भी बातें करेंगे आपके साथ, बॉलीवुड में क्या चल रहा है और क्या ऐसे कुछ नई चीज़ें हैं जिसके आप बिंज कर सकते हो ओवर द वीकेंड, इसके बारे में बातें करेंगे. सुनते रहिए
0: Bollywood's most wanted.
6: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
16: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
2: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
0: Breakfast show with VJ and Pooja.
3: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
4: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब क्या, क्या?

0: हमने ऑफर अभी बात की तो हमें पता चला है कि जो क्रिस्टी की पंजाबी और मेरी पंजाबी ऑलमोस्ट सेम लेवल है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी वार्तालाप करें. वार्तालाप हिंदी में हो गया ना, लेकिन
1: हिंदी है वो उसमें. कम ऑन यार,
0: अभी
1: कितना सिखाया,
0: कुछ नहीं सिखाया. इसको नहीं आती पंजाबी, सच बोल रहा हूँ मैं.
1: मैंने ऑन दिया.
2: हाँ जी,
0: बस यही बोलती है ये.
2: चलो कोई नहीं,
0: हमेशा
3: यू नो व्हाट दैट्स ओके.
2: व्हाट डू यू कॉल इट, लाइक मोर डेमोग्राफिक है ना. हां
3: जी,
2: हां पंजाबी हिंदी.
0: अभी 15 साल से रेडियो कर रही है ना, तो वो अभी हिंदी
1: मेरी सारी मिक्स हो गई है.
2: अच्छा,
1: मेरी हिंदी बोलते बोलते पंजाबी वर्ड्स निकलते हैं, घर पे पंजाबी बोलते हुए हिंदी वर्ड्स निकलते हैं.
2: साडी पंजाबी इंग्लिश दे नाल मिक्स हो जाती है.
3: इट्स ऑल ओवर द प्लेस, हिंदी पंजाबी इंग्लिश.
1: या
3: सारा कुछ.
0: अच्छा, लेकिन योर कमिटमेंट इज रियली गुड यार, बिकॉज यू हैव बीन टॉकिंग इन पंजाबी लाइक रेगुलर. भले हम अलग अलग भाषा हमने स्विच की है, बट एनीवे टॉकिंग अबाउट भाषा, तो आप जब गाने क्रिएट करते हो, आपके गानों की क्या लैंग्वेज होती है?
3: अंग्रेजी. हाई फाई. या इंग्लिश. वी स्टार्ट विद इंग्लिश.
2: इंग्लिश में आप स्टार्ट करते होते हैं, एंड देन लाइक जेड़ा आप हम पंजाबी गाना लिखिया. शाउट आउट टू आर्श हु इज ऑन द रीमिक्स दैट वी जस्ट रिलीज्ड. उन्हां दी हेल्प दे नाल आप ही गाना बनाया सी. ते बेसिकली व्हाट वी डिड इज आर्श दे नाल लिरिक्स प्रोडक्शन.
0: आर्श नाम है उनका.
1: आर्श जी.
2: आर्श कौन है? हां जी,
3: आर्श पाजी दा दोस्त. दा दोस्त
2: है. या आर्श सर दा दोस्त है. ते ही इज आल्सो फ्रॉम न्यूजीलैंड. But we took this gana to a good friend of ours, Vince Harder, who is really well known in the music industry in New Zealand. Te una de naal apa fir melody change kiti, you know, basically changed the whole vibe of the song. So it's a cool process.
1: Okay.
3: Yeah,
0: absolutely. And what are your guys like? Like you guys have divided your roles in music creation, or what is it?
3: Sometimes I think Jacobi does rapping a lot is, and I sing, but we love to do everything. Sara, because you know,
2: I've been personally getting out of my comfort zone because art is art, na.
0: Yeah.
2: So you don't know what's going to come out at the end of the whole project. So embarrassment is the best way to find out what's going to be coming out into a nice, beautiful art piece.
1: Wow.
0: Right. Okay.
3: So, beautifully said.
2: Yeah.
1: Yeah.
0: Beautifully said. And now I'll keep you stuck to it now.
2: Yeah, 100%.
1: Because, yeah.
0: today, after 5, we are going to hear you rap live on air.
1: Are you ready?
2: 100%.
1: Yeah. Yeah. There you go.
0: Great. That's awesome. Yeah. And are you going to be singing for us?
3: मैं सिंग करलूंगी.
1: करलूंगी मैं. कॉन्फिडेंस नहीं देखे कुड़ी दा.
0: पंजाबी विच. पंजाबी विच.
3: या
0: क्या बात है.
1: एक्चुअली गाना है क्रिस्टी दा पंजाबी च ना, वो नूर एंड जन्नत.
3: हां जी.
1: या
0: आपके सारे गाने यहां पे प्ले होते हैं.
2: थैंक यू सो मच.
3: थैंक यू सो मच हमें फेम. या
2: वी आर ब्लेस्ड. थैंक यू.
0: नो अभी तक तो शुरू नहीं किया है इंटरव्यू यार, अभी तो हम ऐसी बातें कर रहे हैं.
1: ये हो सकता है कि जाने यहां पे जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो उसके बाद बहुत लाइक ब्लेस्ड का उल्टा हो जाए.
2: नहीं
0: तो अभी तक आ गया रहेगा फीलिंग.
1: क्यों आए थे हम यहां पे.
0: नहीं बट द थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर, लाइक यू नो ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून यू गाइस आर कमिंग हियर एंड ग्रेट क्रिएशंस लाइक द म्यूजिक दैट यू गाइस हैव क्रिएटेड. वी दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग दैट हमने ये रेगुलरली हम प्ले करते रहते हैं आपके गाने. लेकिन आज हम आपसे बात करना चाहते हैं अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, कि हाउ डिड यू गेट इनटू दिस, थोड़ा बहुत उसके बारे में, और फिर क्या एक प्रोसेस क्या होता है आपका, गाने कैसे आप बनाते हो, उसके बारे में अगर आप थोड़ी बहुत चीजें अगर शेयर कर सको. 5 बजे के बाद आज उस चीज के बारे में बात करेंगे,
1: बिकॉज़ फ्यूचर के बारे में भी, ड्रीम्स, मैनिफेस्टेशंस, ऑल दैट
0: काइंड. क्योंकि हमारे काफी लिसनर्स है जो करना चाहते हैं बहुत सारी चीजें, बट कहीं ना कहीं यू नो दे लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन. सो इफ यू कैन गिव दैट इंस्पिरेशन टू देम, आई थिंक दैट विल बी ग्रेट. So,
3: Love to.
0: So we're going to talk more after 5, but abhi ke liye straight from the heart mein ye bahut hi beautiful gana Amal aur Shreya ke Ghoshal ki awaaz mein.
1: Thank you.

0: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी ल्यूक वार्म, टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply. Hum. Accurate traffic.
2: Visit a Ryman Village open day.
3: Mainly clear, a low of 9 degrees for Auckland. Out of town to Constellation Drive on the northern, 36 minutes. Heavy patches from the CBD to after Ismond Road. It's slow from there to Silverdale. Still about an hour. It's heavy around Albany and slow there to Snow Planet. To Massey on the northwestern, 40 minutes for heavy west to Lincoln Road. And the southern to Monaco, about an hour. It's heavy essentially all the way out.
2: Ryman Villages are open to view today and tomorrow, 10 till 2. Search Ryman open days.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: Moisture और ventilation का problem लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन socials.
8: The Drive Show with Sandy and Rusby.
9: Hamesha saath dene wale dost.
1: Brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
10: Power Drive at 5.
8: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Bollywood's most wanted.
11: Gundi ghad jao ya seedha andar aao.
12: Main laau apna A game.
8: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: मीका सिंह की आवाज असी स्कोर के साथ यू आर लिसनिंग टू हम्पलिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। अभी मौका है आपको, यहाँ पे हम देंगे आज का फ्लाई अवे फ्रेंजी का फाइनल कोड। फाइनल फ्लाई अवे फ्रेंजी का कोड है ये,
1: तो एंड द कोड इज वेकेशन।
0: वेकेशन VACATION
1: वेकेशन इज द कोड। सो रोवा ऐप पे जाएगा, फ्लाई अवे फ्रेंजी की पोस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड एंटर द कोड। आपके पास 1 आवर का समय है इस कोड को एंटर करने के लिए। एंड अगर आप टाइम पे कर देते हैं, अब भी जाके कर दीजिए, अगर आप टाइम पे कर देते हैं तो यू आर इन टू विन अ रिटर्न एयर टिकट टू फिजी।
0: तो फटाफट जाइए, और मतलब यू हैव रफली less than an hour now to go and put in the code on Rowa app। वेकेशन है आज का कोड, डाल दीजिए फटाफट।
2: पावर ड्राइव एट 5 ब्रॉट टू यू बाय फोकस किचन्स, क्वालिटी किचन्स विद मॉडर्नाइज्ड कस्टमाइज्ड डिजाइंस फॉर योर ड्रीम किचन।

0: The weekend.
1: Yes, over the weekend आप क्या क्या देख सकते हैं ये आपको बताने का वक्त आ चुका है. But before that, thanks to Christy Checker, बहुत ही अच्छा उनका गाना यहाँ पे जो था ये प्ले हुआ. थैंक यू आपके फीडबैक के लिए भी. Over the weekend, वैसे रिवेंज, धुरंधर द रिवेंज ये आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे.
0: अगर आपने
1: नहीं देखी है या अगर आपने नहीं देखी है तो ये मूवी आप जाके जरूर देख सकते हैं. मस्ट वॉच आई विल से. आई हैव फ्यू रिकमेंडेशंस.
0: वो सैफ अली खान का कर्तव्य भी आई थिंक रिलीज हो रहा है ना.
1: ओह यस, अभी तक उसका मैंने देखा नहीं है. जैसे आता है ना न्यू ऑन नेटफ्लिक्स में क्या क्या है
0: तो वो नहीं आया अब तक,
1: तो अभी तक आया नहीं होगा. बट होम बाउंड मैंने देखी है. व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी. सो अगर आपने नहीं देखी, इट्स वेरी नाइस. इट इज, बट इट्स रियली नाइस मूवी. अगर आपने नहीं अभी तक देखी है जरूर देखिएगा. देयर इज अनदर मूवी, घोस्ट ऑफ गर्लफ्रेंड्स पास्ट. सो इट्स वेरी नाइस चिल्ड काइंड ऑफ मूवी जो कि एक्चुअली में आप देख सकते हैं.
0: टाइटल से तो लग रहा नहीं है कि एकदम चिल्ड
1: चिल्ड है. घोस्ट ऑफ, इट्स नॉट हॉरर मूवी.
0: हॉरर नहीं है,
1: इट्स नॉट हॉरर मूवी. सो मैं इसका बताती हूँ क्या होता है. कि ऑन द ईव ऑफ ब्रदर्स वेडिंग, दिस गाय ही एम्बार्क्स ऑन अ मिस्टीरियस जर्नी एंड एक्सप्लोर हिज रोमांटिक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो दैट्स व्हाई द नेम इज घोस्ट ऑफ गर्लफ्रेंड्स पास्ट.
0: अच्छा.
1: Yeah,
0: okay.
1: So it's very nice, like good comedy bhi hai usme, like you can actually just enjoy watching it. Halke fulka sa agar aapko kuch dekhna hai to. But kafi tareef sun rahi hu Madam War ke bare mein.
0: Madam Web ke bare mein. Madam Web se dekha maine.
1: Dekha tumne?
0: Haan.
1: Kaisi hai?
0: Are bahut mast hai.
1: Okay, so really इसके मैंने काफी तारीफ सुनी
0: so
1: है.
0: So basically, अगर आपको Marvel के कुछ सीरीज पसंद आते हैं, मतलब Spider-Man और ये सब, तो इसका एक अलग ही पैरेलल टेक है. मतलब ये एक सही लगा मुझे. It is
1: okay,
0: nice.
1: Okay.
0: The actors also are
1: really
0: good.
1: It's about a woman जिसको future दिखाई देता है, right?
0: हाँ, immediate future ऐसा.
1: Immediate future दिखाई देता है and she can control things उससे पहले अगर वो चाहे तो.
0: हाँ, मतलब around that.
1: So, ये भी आप जाके एक्चुअली में देख सकते हैं, मेरे लिस्ट में भी है.
0: और Amazon Prime पे सपने वर्सेस एवरीवन 2 सीजन 2 आ गया.
1: सीजन 2, या.
0: और वो मैं अभी देख रहा हूँ. एंड इट्स नाइस.
1: अम्बरीश वर्मा जो है, वैसे उन्होंने पोस्ट भी किया इसके बारे में, जिन्होंने सीरीज को बनाया है, कास्ट भी वो है इस पे खुद. उन्होंने इसके बारे में पोस्ट किया है, काफ़ी प्यार इस सीरीज को मिल रहा है. बिकॉज सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2 ज़्यादा मेरे को लगता है प्रमोट हुआ है, जिसकी वजह से लोग जाके सीजन 1 देख रहे हैं पहले.
0: हाँ, क्योंकि सीजन 1 यूट्यूब पे आया था.
1: या
0: और मैंने आपको तभी बोला था ना यूट्यूब पे. एंड देन सीजन 2 अमेज़न प्राइम ने खरीद लिया, सो विच वॉज गुड. सो या देयर सम थिंग्स, फ्यू थिंग्स दैट यू कैन बिंज ऑन ओवर द वीकेंड. ज़रूर बताइए आप भी क्या बिंज करने का प्लान कर रहे हो, ताकि हमें भी थोड़ा अपडेट हो जाए. 5599 इज द नंबर फॉर यू टू मैसेज अस.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
2: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
3: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
5: छह बज चुके हैं आपके लिए. ट्रेंड मेकर्स यहाँ पे हम लेकर आते हैं और आज है फ्राइडे. गुड इवनिंग सैंडी.
6: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग रुज़बे. और आज फ्राइडे के दिन में माधुरी दीक्षित को ट्रिब्यूट हम देने वाले हैं इस आवर में,
5: क्योंकि आज उनका हैप्पी बर्थडे है.
6: हैप्पी बर्थडे माधुरी है आज. माधुरी बहुत लोगों की फेवरेट रही है यार. एंड आज तक जो माधुरी धक धक गर्ल एक्चुअली में.
5: और अभी माधुरी दीक्षित का एक नया सीरीज या मूवी कुछ आ रहा है.
6: कौन सा वाला
5: पता नहीं. वो तीन लड़कियां हैं, माधुरी दीक्षित भी है उसमें एक. अभी बीच में ही मैं ट्रेलर देख रहा था, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे ही आ रहा है वो.
6: ओके.
5: तृप्ति दिमरी भी है उसमें.
6: या
5: बहुत ही अलग रोल है माधुरी दीक्षित का इस मूवी या सीरीज में, जो भी है. अगर आपको मालूम है नाम क्या है तो प्लीज हमें यहाँ पे बताइए. हेल्प अस आउट.
6: पर माधुरी दीक्षित मस्त से कि जैसे ही इंडस्ट्री में आई, बहुत लोगों को ओवरनाइट इसने दीवाना बना लिया था. एंड स्टारडम जो है माधुरी दीक्षित की स्पेशली राइज हुई जो हम पहला गाना प्ले करने वाले हैं. ये एक ऐसा गाना बन गया. माधुरी दीक्षित के जो डांस स्टेप्स हैं ना, वो सिग्नेचर डांस स्टेप्स होते हैं. और स्पेशली इस गाने में जो उनका डांस स्टेप है एक पर्टिकुलर, वो एक ऐसा सिग्नेचर बन गया कि मतलब मैंने स्कूल में भी हर जगह पे देखा है, आज तक काफी लोगों को देखा है इसके ऊपर परफॉर्म करते हुए. वैसा ड्रेसअप होके,
5: वैसा ड्रेसअप होके,
6: प्रॉपर वैसा ड्रेसअप होके परफॉर्म करना.
5: या मतलब भले ये गाना रिक्रिएट हुआ है और रिक्रिएटेड गाना भी बहुत बड़ा हिट है, बट जो ओजी है ना
6: वो आज आपके लिए प्ले करेंगे.
5: और मुझे लगता है ये पहला ऐसा एक रिक्रिएटेड गाना है जो रिक्रिएटेड गाने पे भी ओरिजिनल माधुरी के स्टेप्स होते हैं जब लोग परफॉर्म करते तभी.
6: बिकॉज़ यू कैन कनेक्ट ओनली विद दोस काइंड ऑफ स्टेप्स.
5: या सो फॉर यू आज दिस इज आर इज गोइंग टू बी माधुरी दीक्षित आर. एंड फॉर यू दिस फर्स्ट सॉन्ग इज अलका याग्निक की आवाज में एक बहुत ही हैपनिंग

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।

0: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, आपके लिए एक से गाने आज यहाँ पे, और वो भी माधुरी दीक्षित स्पेशल.
1: या सो माधुरी दीक्षित जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट की स्टडी जिसने की, लेकिन एक्टिंग की और बड़ी. शी इज़ अ ट्रेंड कथक डांसर एज वेल, नो डाउट. उनके डांस को देख के पता चलता है कि उन्होंने, उनको डांस जो है प्रॉपर ट्रेनिंग ली है. इनफैक्ट वो 3 साल की थी रूस में जब उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है कथक में. एंड काफी मूवीज में
0: साल से वो कर रही है,
1: 3 साल से वो कथक कर रही है.
0: आज भी याद है, मैं जब छोटा था और हमारे यहाँ पे ना एक कथक क्लास होता था हमारे लोकल इसमें, और जो वहाँ पे लड़कियाँ जाती थी ना, हर किसी का सपना था माधुरी दीक्षित बनना.
1: या एक मूवी भी आई है,
0: मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. एंड आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन दैट ओनली, बिकॉज़ एवरीवन वाज जस्ट माधुरी दीक्षित फैन.
1: इनफैक्ट ये मैंने जोक भी सुना है कि काफी लोग जो आई थिंक जो मुंबई, आई डोंट नो तुम्हें पता होगा ये, जो मुंबई से है, काफी लड़कियां जो कहती है कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, उसको सीधा ये बोलते हैं ये तो माधुरी है, ये तो माधुरी दीक्षित है. ये अपने आप को माधुरी दीक्षित ही समझती है कि इसको ये सब डांस आता है. तो डांस की बात होती है बॉलीवुड को लेके ना, इट्स माधुरी दीक्षित.
0: एब्सोल्युटली, मेरे को ना उनके काफी गाने बहुत पसंद आते हैं, लेकिन मेरे को एक गाना जो उनका बहुत ज्यादा सही लगता है ना, दैट इज विद प्रभुदेवा. पुकार मूवी का गाना,
1: उसके बारे में भी बात करेंगे.
0: सो आज बहुत सारे गाने उनके सुनाएंगे आपको, लेकिन अभी के लिए दिस इज फ्रॉम विच मूवी, माय नी माय
1: हम आपके
0: है कौन.
1: इसमें भी माधुरी दीक्षित का स्टेप है, एक
0: अनदर क्लासिक.
1: अनदर मतलब इसमें क्लासिक है, और ये गाने में भी एक स्टेप है, वो जो ऐसा मतलब यू नो हाथ को चांद की तरह ऐसा बना के करती है, गुल गुल घूमती है. सो यू कैन एक्चुअली, लोग जो है जब ये गाने के ऊपर डांस करते हैं, वो हर कोई वही स्टेप करता है माधुरी दीक्षित का.
0: तो चलो अभी गाड़ी चलाते चलाते या घर बैठे बैठे कीजिए आप भी ये स्टेप.

0: हमारे आपस में इसलिए गए, मुलाकात हो गई आपसे।
1: हम वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना,
1: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424। Resene is New Zealand's most trusted paint brand, made in New Zealand for our unique conditions. Resene's quality, innovative paints and wood stains, plus the huge variety of colors, are ideal for homeowners and professional painters. Always choose Resene for your decorating projects. Auckland, इस वीकेंड $100 स्पेंड करो इन स्टोर एट माइटेटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन और पाओ $20 माइटेटन गिफ्ट कार्ड सिर्फ सैटरडे एंड संडे। टीज एंड सीज अप्लाई। मोर वैल्यू, मोर प्रोजेक्ट्स, मोर सेविंग्स। जल्दी कीजिए माइटेटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
4: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री। सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepy head beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
9: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
10: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
11: हमेशा साथ देने वाले दोस्त।
12: Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe with Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449 and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
13: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. आपके लिए आज ट्रेंड मेकर्स में हम माधुरी दीक्षित आवर लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ माधुरी दीक्षित के गाने आपको सुनाएंगे।
14: Yeah, माधुरी दीक्षित एक ऐसी कलाकार किसी के लिए पेंटिंग इंस्पिरेशन भी बनी। रिमेंबर फेमस पेंटर MF हुसैन, मतलब वो इतने दीवाने थे माधुरी दीक्षित की कि उनकी पेंटिंग्स वो किया करते थे। ही वॉच्ड हम आपके हैं कौन 67 टाइम्स।
13: वाओ,
14: या ही मतलब इतने वो उसके दीवाने थे,
13: ये जो पेंटर थे,
14: ये जो पेंटर थे MF हुसैन। एंड ही मेड अ मूवी एज वेल। MF
13: हुसैन ने देखा है उनको?
14: MF हुसैन,
13: ओ वाओ,
14: या एंड देन ही मेड अ मूवी गजगामिनी इन हर ऑनर।
13: ओ वाओ, क्या बात है यार। क्या आपको पता है कि 1994 में उन्होंने ग्लास सीलिंग तोड़ा था, जहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार या नहीं पता नहीं, बट ऐसा हुआ था जहाँ पे उनको हीरो से ज्यादा पैसा मिला था। पता है ये कौन से हीरो के अगेंस्ट उनको ज्यादा पैसा मिला था?
14: कौन से?
13: सलमान खान फॉर द मूवी हम आपके हैं कौन।
14: ओके,
13: इन 1994 रिपोर्टेडली शी वाज पेड 2.75 crores।
14: Wow.
13: Which was way higher than what Salman Khan got.
14: Yeah, because उस समय सलमान खान का इतना नहीं था,
13: बहुत ही नए थे ना वो,
14: बहुत नए थे वो भी।
13: Madhuri was very well established by that time.
14: 100%. माधुरी दीक्षित ने, मेरे को लगता है कि you know, इन्होंने collaborations में, इन्होंने love triangle में भी बहुत काम किया है। Remember साजन movie में संजय दत्त and सलमान खान।
13: दिल तो पागल है movie में।
14: दिल तो पागल है, अक्षय कुमार एंड शाहरुख खान।
13: करिश्मा कपूर एंड माधुरी दीक्षित, यार कम ऑन।
14: हाँ, अक्षय कुमार भी आता है ना उसमें।
13: हाँ, अक्षय कुमार आता है बाद में,
14: मतलब माधुरी का लव ट्रायंगल।
13: हाँ,
14: सो मुझे लगता है दिल तो पागल इज अनदर मूवी जिसमें माधुरी दीक्षित क्या लग रही थी यार, माया, सो ब्यूटीफुल माया। माया के रोल में तुम किसी और को इमेजिन कर ही नहीं सकते।
13: या या, इट वाज जस्ट अ क्लास वन। या तो दिल तो पागल का ये गाना आपके लिए इस बार।

0: with Sandy and Rusby.
1: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
2: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
3: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और आपके लिए यहाँ पे आज हम ट्रेंड मेकर्स में लेकर आ रहे हैं
4: माधुरी दीक्षित स्पेशल.
3: मैंने बोला था ना पहले कि वो नेटफ्लिक्स पे जो उनकी अभी एक रीसेंट आने वाली है डार्क कॉमेडी ड्रामा है ये और इसका नाम है माँ बहन.
4: ओ माँ बहन. ओके
3: माँ बहन. इसमें माधुरी दीक्षित है, तृप्ति दिमरी है और भी काफी कलाकार है उसमें.
4: माधुरी दीक्षित की डांस के बारे में बात करते हैं तो उनकी डांस एकेडमी भी है विच इज़ ऑनलाइन. इट्स कॉल्ड डांस विद माधुरी. सो अगर उन्होंने यू नो ऐसी चीज़ें बना के रखी है कि अगर किसी को डांस सीखना है तो वहाँ पे उस ऑनलाइन एकेडमी से एक्चुअली में वो सीख सकते हैं. माधुरी दीक्षित टाइप ऑफ स्टेप्स एक्चुअली में वहाँ पे सीख सकते हैं.
3: क्या बात है. आपको पता है ऑनलाइन से कितनी ये फॉरवर्ड लुकिंग है. इन्होंने एक AI इंटीग्रेशन प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया है.
4: ओके
3: RNM मूविंग पिक्चर्स और ये एक्सप्लोर कर रहे हैं AI इन फिल्म मेकिंग और ये ग्लोबल टेक फर्म्स के साथ पार्टनर कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ न्यू स्लेट ऑफ AI ड्रिवन कंटेंट.
4: वाओ.
3: सो काफी फ्यूचरिस्टिक है माधुरी दीक्षित जो अभी भी काफी एक्टिव है इन मूवीज इन सीरीज बट आल्सो एज एन एंटरप्रेन्योर.
4: वाओ. सो अपने टाइम पे 90s के अभी भी टाइम है खैर उनका लेकिन 90s के टाइम पे शी वॉज हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस जैसे रुजबे ने बताया थोड़ी देर पहले. लेकिन बहुत सारी मूवीज़ में पता है उन्हें हाई पे किया जाता था. इवन उनका जो रोल था देवदास में यार चंद्रमुखी का रोल मुझे नहीं लगता है वो माधुरी दीक्षित का उसमें स्टेप था ना मार डाला सॉन्ग में.
3: क्या रोल प्ले किया था. एंड
4: आल्सो
3: सिमिलरली कलंक मूवी में भी माधुरी दीक्षित ने बहुत ही ग्रेसफुली रोल निभाया था जो उन्होंने रोल निभाया था.
4: आई थिंक व्हेन नाउ व्हेन शी इज बैक इन मूवीज एंड सीरीज शी इज डूइंग रोल जो उनको सूट करते हैं.
3: हाँ.
4: She's
3: not doing everything and she's doing really like out of the box जो हमने कभी imagine नहीं किया था ना वैसे bold type के roles भी कर रही है माधुरी दीक्षित. But फिल्म फेयर के रिकॉर्ड है उनके पास 17 nominations फॉर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस और उन्होंने चार अवार्ड जीते हैं एंड दो और इन अदर कैटेगरीज भी उन्होंने जीते हैं.
4: एंड माधुरी दीक्षित इज वन एक्ट्रेस जिनको हमेशा मधुबाला के साथ बहुत कंपेयर किया गया है. मधुबाला वॉज अनदर वेरी ब्यूटिफुल एक्ट्रेस एंड माधुरी दीक्षित की स्माइल आई थिंक उनका डांस का मेन पार्ट ये है. इट्स नॉट जस्ट अ डांस
3: हर एक्सप्रेशंस
4: और उनकी स्माइल जो उनकी नहीं जाती है फेस पे ना मुझे लगता है वो मेन पार्ट उनका डांस का रहा है. उनकी जो फेस उनका जो साथ में डांस करता है एक्सप्रेशंस. सो या माधुरी दीक्षित के दीवानों के लिए आज हम ये पूरा का पूरा आवर डेडिकेट कर रहे हैं.

0: लिसनिंग टू हंपलिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. सैंडी एक चीज मैंने नोट की है यहाँ पे. आज माधुरी दीक्षित के हम स्पेशल गाने प्ले कर रहे हैं क्योंकि आज उनका बर्थडे है, 59th बर्थडे. एंड वन चीज की 90s में जब माधुरी दीक्षित के गाने जो भी हिट हुए मोस्टली अलका याग्निक ने गाए उनके गाने.
1: 90s का ऐसा टाइम था रुजबे की जब एक सिंगर के ऊपर एक पर्टिकुलर आवाज जो थी ये यूज की जाती थी. लाइक उदित नारायण आई विल से फॉर शाहरुख खान, एसपी बाला अभिजीत आल्सो, एसपी बाला सुब्रमण्यम फॉर सलमान खान, देन अलका याग्निक फॉर माधुरी दीक्षित. इस वजह से बहुत उस समय पर ट्रेंड था. Which I think worked
0: Sudesh
1: in that
0: Bhosle
1: era.
0: For Amitabh Bachchan.
1: Yeah, Sudesh Bhosle for Amitabh Bachchan. Yeah. Sounded like Amitabh Bachchan. But yeah, Madhuri Dikshit, Dhak Dhak Girl ke upar aaj humne ye pura ka pura hour dedicate kiya. Aur mujhe nahi lagta hai ki unke upar itni baatein jo hai hum 1 hour mein bhi complete kar sakte hain. But aaj bhi wo kaafi dilon ki dhadkan hi hai. Reality shows mein she made a comeback in the movies. TV reality shows mein hum unko dekhte hain. एंड यू नो उस समय पर अपने पीक पे होना, करियर के पीक में होना और अनाउंस करना कि मैं अभी मूवीज छोड़ रही हूँ, ये बहुत ही बड़ी बात होती है.
0: फैमिली को उन्होंने प्रायोरिटी दी वो टाइम पे.
1: या एंड शी वेंट ओवरसीज
0: एंड देन शी केम बैक आफ्टर दैट एज वेल. एंड बहुत ही बढ़िया उन्होंने फिर से स्टार्टअप किया एंड शी जस्ट शोड द वर्ल्ड कि भाई अगर तुम्हारे में टैलेंट है, ग्रेस है, तो इट डजंट मैटर, एज इज जस्ट अ नंबर, यू कैन कम बैक एनी टाइम एंड यू कैन जस्ट गेट बैक इनटू एंड स्टार्ट डूइंग वंडर्स.
1: या 100%. सो जाते जाते भी माधुरी दीक्षित का ये गाना एंड वन मूवी माधुरी दीक्षित जहाँ पे उन्होंने नेगेटिव रोल में काम किया था, पुकार मूवी में. या शी वाज इन नेगेटिव रोल.
0: अच्छा.
1: या ग्रे शेड का रोल था इसमें.
0: ओह वाओ, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है अभी यार. दैट्स सो क्रेजी, बट इट वाज सच अ गुड मूवी यार पुकार. देखनी पड़ेगी. लेकिन एक और चीज जो मैंने इनके बारे में पढ़ी अभी वो ये है कि शी इज़ द ओनली वन, ओनली एक्ट्रेस ऑफ हर ईरा टू बी कोरियोग्राफ्ड बाय लेजेंडरी कथक मेस्ट्रो पंडित बिरजू महाराज, जिनको लगता था कि माधुरी दीक्षित इज द बेस्ट डांसर इन बॉलीवुड.
1: उन्होंने हमेशा अपने इंटरव्यूज में हर जगह पे उन्होंने माधुरी दीक्षित के बारे में बहुत हाईली बातें की है.
0: तो चलो इसी बात पे अभी हम भी कल्टी मारते हैं. थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए, और मुलाकात होगी आपसे अब मंडे.
1: या टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय,
0: हैव अ वंडरफुल वीकेंड.

लो पसीना पोछ लो। आंखों में शरारत है, होठों पे शिकायत है, बेचैन तबीयत है, बेताब सी हालत है,

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
0: है। 6 to 10 a.m.
4: Bah. Forget counting sheep. Count the savings at Briscoe's with a huge 25 to 60% off the entire store. Plus, shop 60% off Cozy Home Super Savers, like all Zip Electric Blankets 60% off. Hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich Tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
0: Non-stop Bollywood.
6: पूछो क्या करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
7: Let's go.
0: The weekend starts here.
8: Friday night rave.
0: हम

0: Hollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Give money, give cash.
3: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
4: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप.

0: चाहे आप हमके दें चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: Purani gaadi aur mehenga fuel kab tak chalega? Switch to Leap Motor C10 aur B10 Ultra Hybrid aur Electric. Sirf 44,990 plus on-road se shuru. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane aur Botany. T's and C's apply. They call

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Poke Koi, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
6: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखें प्लास्टिक 125 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।
7: The beat of Bollywood.
8: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry, and if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ,
2: अच्छा
1: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह,
3: अरे बम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33

0: दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: flight on Hum.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.
2: Hey, hey.

0: Media.
1: Streaming on Rover.
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
3: हाँ, अच्छा
2: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
6: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने। Playing Bollywood's biggest hit.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Oglin, tayyar ho jao ek sufi raat ke liye. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert, along with Shah Zaman Ali Khan, Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
4: Playing Bollywood's

0: Flight on Hum.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या है कि मैं
4: बहुत खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
3: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
5: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
1: वीकडेज 6 to 10 a.m.
6: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: Award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
9: कहानी ऑफ इनडेलिबल होम्स।

के ढिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स। Playing Bollywood's biggest

गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं क्रिश आपका साथ देने के लिए आ गया हूं और अभी से लेकर 12 तक हमारा साथ रहेगा। दिन में 12 तक आपको हमारा साथ देना है। इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आएंगे आपके लिए। सैटरडे ब्रेकफास्ट शो आपके लिए जारी है, ओनली ऑन योर नंबर 1 हम

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: यू गिव माय निक गिव दैट New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
3: South Auckland Motors' biggest sale ever is on now. Save thousands on new, demo and used cars. With big deals, big choices and big savings. On now, but ends Sunday at South Auckland Motors, Manukau, Botany and Pukekohe.
4: With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG Empower to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free power shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis. With you.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे
6: चूड़ी कंगन पायल बाली झुमके और चोकर ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं समझे
5: सोना संसार पापा टोटो जहां था वहां अभी भी है शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स पापा टोटो
7: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड पापा टोटो सोना संसार यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: Good morning, everyone. You're listening to number one hum, playing Bollywood's biggest hits. और एक के बाद एक आपके लिए वो तमाम हिट्स हम पेश करते रहेंगे. जितने भी हमारे मॉर्निंग अर्ली राइजेज है, आपका खास स्वागत करते हैं. जल्दी जागने की आदत है, चाहे वीकेंड हो, चाहे काम हो या नहीं हो, तो आपका खास स्वागत करते हैं. आप सुनते रहो अपना फेवरेट हम और आपके फेवरेट सॉन्ग्स हम यहाँ से पेश करते रहेंगे. मैं क्रिश आ गया हूँ सैटरडे ब्रेकफास्ट शो लेकर, और हमारा साथ मिड डे तक रहेगा और बहुत इन्जॉय करेंगे हम साथ में मिलकर.

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: 16th मई आज है, सैटरडे है। अगर आपका जन्मदिन है, वेरी हैप्पी बर्थडे आपको विश करेंगे बहुत ही जल्दी। जितने भी हमारे लवली लिसनर्स आज सेलिब्रेशन रखे हुए हैं घर पर, फैमिलीज आने वाले हैं और बहुत कुछ होने वाला है घर पर। आपने कुछ खास लोगों को इनवाइट किया है और प्रेपरेशन आज से ही शुरू हो जाएगा, कुछ ही देर से ही। जैसे आप उठकर ब्रेकफास्ट के बाद फुल ऑन प्रेपरेशन शुरू हो जाएगा। तो हमारी ओर से बहुत सारी मुबारकबादियाँ आपको। आप अपना काम करते रहो और यहाँ से एंटरटेनमेंट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कृष का साथ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

0: तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: यहाँ

0: रूबरू होना और आपसे मिलना, आपसे बातें करना वर्चुअली ऑल दो, लेकिन मज़ा आता है कि आपका प्रेजेंस हमें बहुत फील होता है जब आपके साथ इंटरेक्शन कॉन्स्टेंटली होते रहता है। क्रिश का साथ है, सुनते रहो हम।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. Sif Rewapar.
1: So you're trying to eat less meat, but you're no Jamie Oliver? Before you spend 45 minutes trying to make a can of lentils taste like dinner or turn a cauliflower into steak, listen to the sound of a BK plant-based Whopper patty sizzling on a flame grill. Mmm, smoky, juicy, and effortlessly tasty. Tofu who? Burger King, king of plant-based. See burgerking.co.nz for details on our plant-based range.
2: Gold Coast is on sale now at Qantas. From sun-soaked beaches and luxury retreats to lush hinterland escapes, find that holiday feeling in the Gold Coast. Book now at Qantas.com. Hurry, sale ends Tuesday, May 19. Terms and conditions apply.
3: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखिए प्लास्टिक 1, 2, और 5 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
2: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम लेकर आते रहेंगे. आपको बस हमें सुनते रहना है और हमारे साथ चिपके रहना है, क्योंकि आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स एक के बाद एक हम लेकर आएंगे. जो गाने आपको बेहद पसंद है, जो गाने आप हमेशा सुनना चाहते हैं, ऐसे ही गाने चुनकर हम लेकर आते हैं आपके लिए. ओनली ऑन हम, क्रिश के साथ है. गुड मॉर्निंग एवरीवन.

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: आपको बस हमारे साथ ऐसे ही देते रहना है क्योंकि अगले घंटे पर आपके लिए हम बहुत कुछ लेकर आएंगे. वी विल प्ले सम रियली नाइस सॉन्ग्स फॉर यू जो आपको काफ़ी एंटरटेन रखेगा जैसे हमेशा हम रखता है आपको, बिकॉज वी प्ले बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. तो एंटरटेनिंग सॉन्ग्स के लिए, बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स के लिए आपको बस हमारा साथ देते रहना है. लवली सॉन्ग्स हम लेकर आएंगे आपके लिए और कुछ बॉलीवुड खबरें भी आपके साथ हम शेयर करेंगे जैसे ही हमें समय मिलता है. आप बस हमारा साथ देते रहे, हमारे साथ चिपके रहे और सैटरडे ब्रेकफास्ट शो एंजॉय करते रहे. ओनली ऑन योर नंबर वन हम

rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.

0: Get more bang for your buck this weekend at Mitre 10. Score yourself a $20 gift card for every $100 you spend in-store or online. Auckland stores only. Conditions and exclusions apply. Offer ends Sunday 17th of May. Don't miss out. On now at Mitre 10.
1: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। auckland.gov.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी All Together Auckland.
2: Playing Bollywood's biggest hits. Budget Gandhi.
3: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
3: A moment, Krishka Magic, only on Hum.
4: वेलकम बैक एवरी वन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं. सैटरडे ब्रेकफास्ट शो जारी है और दिन में 12 तक जारी रहेगा. 16th मई आज है और ये सुबह का सफर आज हमारे साथ. मैं क्रिश आपका साथ दूंगा और जितने भी हमारे लवली लिसनर्स, फर्स्ट आवर पर आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच. अब सेकेंड आवर पर भी आपको हमारा साथ देना है और ऐसे ही मंजिल तक आपको हमारा साथ देते हुए चलना है. जितने भी हमारे लवली लिसनर्स ऑनलाइन हमारा साथ दे रहे हैं, आपको भी याद करेंगे बहुत ही जल्दी. आपके लिए एक स्पेशल सॉन्ग भी डेडिकेट करेंगे इसी घंटे पर. बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स के साथ साथ बॉलीवुड इंफॉर्मेशन भी आपके लिए लेकर आएंगे, तो इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे. क्रिश का साथ है.

0: कॉफी और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मानो
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: बैक टू बैक सॉन्ग्स भी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. ऐसे गाने जो आपको बहुत मज़े आएंगे, मज़ेदार सॉन्ग्स हैं, एंटरटेनिंग सॉन्ग्स हैं, और मॉर्निंग में हमेशा एंटरटेनिंग सॉन्ग्स बहुत अच्छा लगता है. हाई एनर्जी चार्ट बस्टर्स भी हमारे पास है और कुछ रोमांटिक गाने भी आपके लिए हम लेकर आए हैं ताकि आपका मॉर्निंग और भी प्यारा हो जाए. तो ऐसे ही आपको हमारा साथ देना है, क्रिश का साथ है. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुनते रहो एक के बाद एक आपके बेस्ट बेजोड़ बेहतरीन गाने ओनली ऑन हम, बिकॉज वी प्ले बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स फॉर यू.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
1: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
0: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
1: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
0: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
2: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 इयर्स।
3: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। T's and C's apply.
4: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
5: Non-stop Bollywood.
6: Hum.
5: Playing Bollywood's biggest hits. Saturday Breakfast on Hum.
7: A very good morning everyone, welcome back to the show. जितने भी हमारे प्यारे listeners हमारा साथ दे रहे हैं, thank you so much for your great company. बहुत अच्छा लग रहा है. 7:23 on our studio और मैं आपका साथ 12 तक दूंगा और Saturday breakfast show जारी है. सुबह सुबह आपके साथ जुड़ने का मज़ा ही कुछ और होता है. Fresh mind के साथ आओ और you know crisp breeze होते हैं और वेदर भी आज अच्छा होने जा रहा है. तो आज सब कुछ आज हमारा साथ दे रहा है, तो हम भी आपका साथ देने के लिए आ गए हैं. आप भी हमारा साथ दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल. और ऐसे ही साथ देना क्योंकि द लाइनअप ऑफ सॉन्ग्स जो मैं लेकर आया हूँ आप बहुत इन्जॉय करेंगे. तो एक के बाद एक आपके फेवरेट गाने आपको सुनाते हैं. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: लगता
1: चुबे फौसले Frustrated One-Sided Lovers Association.
2: Good morning, everyone. You're listening to Saturday Breakfast Show. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. 16th मैं है. अगर आपका जन्मदिन है, very happy birthday. बहुत ही जल्दी आपको विश करेंगे. आपको बस हमारा साथ देते रहना है. आज सैटरडे है और काफ़ी लोग बहुत बिजी होने जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए, इवेंट्स में जाने वाले हैं. तो इवेंट पर जानकारी जो होने को है अभी आने वाले दिनों में, आज जो होने को है, इस पर भी जानकारी मैं आपको दूंगा. सामाजिक सूचनाएँ भी आपके लिए हम पेश करेंगे, क्योंकि ये हफ्ता काफ़ी इवेंट्स होने को है. अगर आप आउटिंग के लिए मौका ढूंढ रहे हैं या जगह ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कुछ कर सकते हैं ओकलैंड में. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं और सैटरडे ब्रेकफास्ट शो सुनते रहो.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट यू आर अबाउट टू एक्सपीरियंस

0: घर पर कुछ पार्टी है, आई एम श्योर कुछ सरप्राइज पार्टीज भी होंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, लेकिन फैमिलीज हमारे फैमिलीज बिंग फैमिलीज वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और आई एम श्योर कुछ सरप्राइज होपफुली आपके लिए हो, एंड होप यू गेट पैम्पर्ड। टीम हम की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कुछ और गाने कुछ ही देर में आपको सुनाता हूँ और फिर और इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ में शेयर करूंगा। इवेंट्स क्या कुछ होने को है इस पर भी जानकारी।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Get more bang for your buck this weekend at Mitre 10. Score yourself a $20 gift card for every $100 you spend in-store or online. Auckland stores only. Conditions and exclusions apply. Offer ends Sunday 17th of May. Don't miss out. On now at Mitre 10.
2: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today. Flooring.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम

गुड मॉर्निंग एवरी वन, यू लिसनिंग टू सैटरडे ब्रेकफास्ट शो और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हमारा साथ रहेगा ऑल द वे टिल मिड डे. नैनो पार्टिकल्स दैट कुड फाइट डिमेंशिया. आई सल्यूट आवर साइंटिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट्स जो ऐसे कुछ खोजबीन करके लाते हैं ताकि जिंदगी और लंबी हो, जो स्पेशली लोग पीड़ित होते हैं बीमारियों से. जनवरी 28th ऑफ दिस ईयर इसको पब्लिश किया गया. सिडनी ऑस्ट्रेलिया की ये स्टोरी है जहाँ पर साइंटिस्ट ने कुछ स्मार्ट नैनो पार्टिकल्स को क्रिएट किया है टारगेटिंग हार्मफुल प्रोटीन्स. और दीज पार्टिकल्स कैन एंटर डिफिकल्ट एरियाज लाइक द ब्रेन और इससे डिमेंशिया और कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जा सकता है. इस मेथड अवॉइड करता है मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल ड्रग्स जो इस्तेमाल किया जाता है. और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि ये दिस जो अभी रिजल्ट आया है इस रिसर्च का कुड ट्रांसफॉर्म प्रिसिशन मेडिसिन. देन दैट्स रिमार्केबल. एनीवे मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी गाने आपको सुनाते हैं कुछ ही देर में.

0: पिंटरेस्ट पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: Each season, our growers bring you only the freshest seasonal produce, like loose oranges, a fresh deal at just $5.90 a kg. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
3: Absolutely everything is on sale at Freedom. My Freedom members unlock early access and get up to 60% off everything. Not a member? Join today. Sale on now. Only at Freedom.

0: Saturday Breakfast on Hump.
1: You're listening to number one Hump playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hu aur jaari hai aapke liye Saturday Breakfast Show. Good morning everyone. Garma garam chai ki chuskiyan, breakfast tayar ho raha hai. Ek taraf hot breakfast tayar ho raha hai aur ek taraf aap aaram kar rahe hain. Ghar par jab sab log hote hain to kaam bhi bahut hi jaldi ho jata hai, kaam bat bhi jata hai aur acha lagta hai ki kabhi na kabhi koi aapke liye kare, kyunki weekdays to bahut busy hota hai. तो आप ये करते रहो और आई एम श्योर बाहर निकलने का भी प्लान है, शॉपिंग करने का प्लान है, कई इवेंट अटेंड करने का प्लान है. इवेंट्स की बात करें तो आज बहुत कुछ होने जा रहा है. आज होगा, कल होगा, इस पर भी जानकारी बहुत ही जल्दी मैं आपको देने जा रहा हूँ. क्रिश का साथ है, सुनते रहो सैटरडे ब्रेकफास्ट शो.

0: ये है मस्ती मीटर
1: आपके लिए जारी है सैटरडे मस्ती मीटर ओनली ऑन हम मैं क्रिश आपका साथ देने के लिए यहाँ पर हूँ 8:28 ऑन आवर स्टूडियो क्लॉक और हमारा साथ रहेगा ऑल द वे टिल मिडडे मस्ती मीटर में कुछ इंटरेस्टिंग मस्ती करने के लिए जो सवाल है वो लेकर आते हैं ताकि आप भी इसमें इंटरेक्ट कर पाए हमारे साथ 5599 पर आप भी भेज सकते हैं इस सवाल का सही जवाब डॉक्टर गिव्स यू 3 pills एंड टेल्स यू टू टेक 1 every half hour How long will the pills last? आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा 5599 पर अपने नाम के साथ में अगर आप जवाब देते हैं तो आप अपना डेडिकेशन भी हमारे पास भेज सकते हैं इफ़ यू वांट टू गिव अ शाउट आउट टू समवन किसी को याद करना चाहते हैं तो उसी टेक्स्ट मैसेज में आप हमारे पास लिखें ताकि दो काम एक साथ में हो जाए डॉक्टर गिव्स यू 3 pills एंड टेल्स यू टू टेक 1 every half hour How long will the pills last? 3 pills आपको डॉक्टर देता है और आपको बताया जाता है कि 1 pill आपको एवरी आधे घंटे पर लेना है कितनी देर तक ये पिल्स लास्ट करेंगे सही जवाब आप हमारे पास 5599 पर भेज सकते हैं सामाजिक सूचना भी बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे कुछ कम्युनिटी इवेंट्स होने जा रहे हैं इस वीकेंड आज भी एक होने को है इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी फिलहाल मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ
2: yeah,

ऐसे प्यारे सॉन्ग्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे ओनली ऑन हम, आपको बस हमारा साथ देते रहना है। भोजन मेला फूड कार्निवल ये होने जा रहा है कल 17 मई को। इस पर बहुत ही जल्दी मैं आपको जानकारी दूंगा कि कहां पर आप जा सकते हैं, क्या कुछ यहां पर रहेगा। फ्री इवेंट है और बहुत ही मज़ेदार ये इवेंट होने जा रहा है। आज का वेदर मोस्टली सनी बताया गया है, बहुत ही प्यारा वेदर आज होने को है। 16 मई है, इट्स द करंट टेम्परेचर इज 10.5 डिग्री सेल्सियस बट फील्स लाइक 10। टू लेयर्स ऑफ क्लोथिंग रिकमेंडेड किया जा रहा है। मोस्टली फाइन वेदर रहेगा, थोड़ा बहुत मॉर्निंग क्लाउड रहेगा, फ्यू शावर्स होने की संभावना है नॉर्थ ऑफ वर्कवर्थ में। साउथ ईस्टर्लीज का अनुमान लगाया गया है। वेदर जब इतना प्यारा हो तो गाने भी प्यारे होने चाहिए। कृष के साथ है, गुड मॉर्निंग एवरीवन।

0: कॉफी और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: ड्राइविंग यू होम
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत हो?
5: आए आए बताओगे यार।
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: I'm Rachel, and I'm a physio. Recently, I had a patient with a shoulder he'd injured at basketball. He was feeling pretty anxious because he needed to recover by a certain date. So I gave him some reassurance and exercises to do, and we figured out a plan. He was really committed to getting them done and completely recovered in time to hold his newborn twins.
8: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active during your recovery can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
9: Big Points Blitz is on now. Get up to $30 worth of everyday rewards vouchers when you shop at Woolworths or Fresh Choice. Boost the offer in your everyday rewards app, shop in store or online and collect big bonus points. Hurry, Big Points Blitz offer ends 24th of May. T's and C's apply.
10: It's cold outside and the couch is on your mind, but you can't relax till you leave hunger behind. Hot pumpkin soup will really help you unwind. It's what you should be.
0: Bollywood.
11: World's best. Hamari koi brands nahi hai.
0: Saturday breakfast on Hum. Life mein thodi masti zaruri hai. Masti meter ke saath.
12: मस्ती मीटर जारी है आपके लिए हम पर और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और मस्ती मीटर कुछ फन और एंगेजिंग आपके साथ करने के लिए हमने एक सवाल आपसे पूछा है एक डॉक्टर गिव्स यू 3 pills एंड टेल्स यू टू टेक 1 every half hour हाउ लॉन्ग विल द पिल्स लास्ट एक डॉक्टर ने आपको तीन पिल्स दिए हैं और आपको बताया गया है कि आप एक पिल ले सकते हैं एवरी हाफ आवर आधे घंटे पे तो कितने देर तक ये पिल्स लास्ट करेंगे आप हमारे पास 5599 पर अपने नाम के साथ और शो डेडिकेशन अगर हो किसी को याद करना चाहते हैं सैटरडे मॉर्निंग है और मैं आपको याद करना चाहूँगा और अपने फैमिली को अपने फ्रेंड्स को समवन स्पेशल को भी आप याद करना चाहते हैं तो हमारे पास 5599 पर आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं और इसका जवाब भी एट द सेम टाइम आप हमारे पास भेज सकते हैं भोजन मेला फूड कार्निवल ये 17 मई को होगा यानी कल 11 AM to 4 PM और श्री वेंकटेश्वरा देवाष्टनम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना है आपके लिए कि एक फ्री इवेंट है टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वरस टेम्पल प्रोजेक्ट और यहाँ पर फ्री फूड भी होने जा रहा है फ्री एंट्री है फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर यहाँ पर रहेगा ज्वेलरी क्लोथिंग और अदर स्टॉल्स हीना आर्टिस्ट फेस पेंटिंग है बाउंसी कासल है बच्चों के लिए तो आप यहाँ पर ज़रूर जाए 378 Araraimu Road, Ramarama, South Auckland में कल ये होने जा रहा है

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: वेलकम बैक एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आ रहे हैं, अभी वो पढ़कर आपको सुनाऊंगा. लेकिन उससे पहले कि आप एक कीवी वर्ड विजर्ड हैं, इसको यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट इट टू टेस्ट एंड यू हैव अ चांस टू विन कैश विद चर्डल. ईच डे आपको एक कीवी वर्ड सेइंग या फ्रेज दिया जाएगा और यू हैव टू क्रैक इट टू बी इन द ड्रॉ. और क्विकर और शार्प आप होते हैं द बेटर योर स्कोर्स आर. और $100 अ डे जीतने का मौका रहेगा. एवरी डे यू प्ले यू आर इन द ड्रॉ टू विन $100. ईच गेम इक्वल्स वन एंट्री. और अगर आप फास्ट जवाब देते हैं, हिंट्स को अवॉइड करते हैं, तो बोनस एंट्री आपको मिल सकता है. कुल मिलाकर $7,000 टू बी वन. तो आप जितना ज़्यादा दिन खेलते हैं उतना उतना बेटर आपका ओज होता है. तो आज ही रोवा डाउनलोड कीजिए. रोवा की बात करें तो एक और कंपटीशन हम के ज़रिए आपके लिए है, जिसमें आप रिटर्न एयर टिकट टू फीजी जीत सकते हैं. एस्केप दिस कोल्ड विंटर, गो टू फीजी, जहाँ पर एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में एक बहुत ही सन सोक्ड एस्केप होने जा रहा है. गोइंग बैक टू दी the answers जो लोगों ने हमारे पास भेजा है, pills will last for 1 hour. अमित आपने भेजा है. अमित हाई हेलो, आपको याद करते हैं. और 256 आपका जवाब, यू हैव नेल्ड इट. आपने पूरा एक्सप्लेन किया है कि सही जवाब क्या है, वो जो मैं पढ़ूंगा नहीं रेडियो पर, क्योंकि आई एम वॉन्टिंग टू गिव सम मोर टाइम टू अदर्स ताकि वो भी हमारे पास जवाब भेजे. बरखा नंदन नॉट श्योर से आपने 1.5 hours लिख करके भेजा है. अपू और कम कैम आपने हमारे पास भेजा है 2 hours लिख के. तो हमारा जो सवाल बहुत ही सिंपल है, इसका जवाब आपको हमारे पास 5599 पर भेजना होगा. और हमारा सवाल आपके लिए है,

A doctor gives you 3 pills and tells you to take one every half hour. How long will the pills last? एक डॉक्टर है, आपको 3 pills देते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप एक pill every आधे घंटे पर लो. How long will the pills last? आप हमें बताओ. 5599 पर टेक्स्ट करके किसी को याद करना है, किसी को शामिल करना है. शौक से हमारे पास उसी टेक्स्ट मैसेज के अंदर आप उनका नाम भी भेजें ताकि हम के एयरवेव्स पर आपका नाम और उनके नाम के साथ हम आपको याद करें. बहुत ही प्यारा ये गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में.

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम Breakfast show with VJ and Pooja.
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है ये क्या क्या मतलब क्या
3: बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन
2: मेरे को समझ भी नहीं एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून
0: वीकडेज 6 to 10 a.m.
5: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी टीज एंड सीज अप्लाई Auckland, इस वीकेंड $100 स्पेंड करो इन स्टोर एट Mitten Mega Westgate and Henderson और पाओ $20 Mitten गिफ्ट कार्ड सिर्फ सैटरडे एंड संडे टीज एंड सीज अप्लाई मोर वैल्यू मोर प्रोजेक्ट्स मोर सेविंग्स जल्दी कीजिए Mitten Mega Westgate and Henderson
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: Size massive bed sale ends Monday. Whatever size of bed you're after, from single to California King, we have it. And today we're having a massive bed sale. Queen beds from only $7.99. Get a free mattress protector with our Pacific California King bed, only $17.99. And get a single bed for only $2.99. We've got thousands of beds in stock. Take home a new bed today. Must end Monday only at Big Save.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Saturday breakfast show jari hai. Hum fly away frenzy. Kya aap bhi white sandy beaches jana chahte hain? Crystal clear blue waters, turquoise waters dekhna chahte hain? And do you want to enjoy the Piwa Island vibes? Ye mumkin ho payega jab aap Fiji ke liye return air ticket jeetenge. And that is only possible agar aap Hum fly away frenzy competition mein bhaag lenge. Rova app होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत फ़ायदे होते हैं, हम आपको बताते आए हैं, लेकिन ये कंपटीशन के लिए रोवा ऐप होना ज़रूरी है. चार कोच दिए जाएंगे आपको दिन में चार टाइम पर, 8 AM, 11 AM, 1 PM एंड 5 PM. जैसे ही आप ये कोच सुनते हैं 60 मिनट्स के अंदर ये कोच आपको रोवा पर एंटर करना होगा टू बी पार्ट ऑफ द ड्रो. और ड्रो में से अगर आपका नाम निकलता है तो रिटर्न एयर टिकट टू फीजी जीतने का मौका है फॉर अ सन सोक्ड एस्केप दैट यू हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ. इस ठंड से बाहर निकलने का मौका मिलेगा टू गो टू अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ पर बहुत वार्मथ आपको मिलेगा, और फिजी से बेहतर और कोई जगह नहीं मिल सकता इन द पैसिफिक आइलैंड्स क्योंकि बहुत अच्छा ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी यहाँ पर इस टाइम ऑफ द ईयर मिलेगा आपको. वैसे हमारा जो सवाल है, डॉक्टर गिव्स यू 3 pills एंड टेल्स यू टू टेक 1 every half hour, हाउ लॉन्ग विल द पिल्स लास्ट? काफ़ी लोगों का जवाब यहाँ पर आया है और काफ़ी लोगों ने इनफैक्ट गलत जवाब दिया है. सही जवाब मैं आपको बता ही देता हूँ, द पिल विल लास्ट फॉर 1 hour. क्योंकि अगर आपको तीन पिल्स दिया जाता है, एक तो आप तुरंत खा लोगे, फिर आधे घंटे बाद एक और फिर उसके आधे घंटे के बाद एक और, तो 3 pills 1 hour तक लास्ट करेगा. आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा. एक और सवाल लेकर आएंगे सैटरडे मस्ती मीटर में, बहुत ही

Listening to number one humbling Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. It's 9:16 on our studio clock. 16th May hai. Saturday breakfast show jari hai. Good morning, everyone. वैसे वाइब मिक्स इवेंट्स की ओर से ग्रैंड मस्ती नाइट भी होने जा रहा है 23rd मई को नेटबॉल मनुरेवा में और इट विल फीचर रिनाउंड रेडियो जॉकीज फ्रॉम फीजी सत्यानंद जय भैया जी राउडी नमन और साथ में द डांसिंग लेजेंड चरफर कमिंग टू न्यूजीलैंड आफ्टर 17 इयर्स 5 to 6 मसाला मिक्स जो एक बहुत ही पॉपुलर रेडियो प्रोग्राम है फीजी में उसका स्किट भी ऑन स्टेज पेश किया जाएगा कॉमेडी डांस होगा एब्सोल्यूट मस्ती एंड मैडनेस ऑन स्टेज होने जा रहा है ड्यूअल वॉइस सिंगर मनी डिसूजा को भी आप सुन पाएंगे जो मेल और फीमेल आवाज में गाने सुनाएंगे आपको अमेजिंग मोंटो मोनिका परफॉर्म करेंगे युवा डांस ग्रुप और टॉप डीजेस यहां पर होंगे लॉट्स ऑफ गिवअवेज भी जीतने का मौका रहेगा टिकट्स अवेलेबल है हंटर्स फूड टाउन पापाटोए जय फ्रेश मार्ट पापाटोए गेट फ्रेश सुपरमार्केट मैंग्री केस हेयर एंड ब्यूटी सलोन मनुरेवा विकेट चिकन बॉटनी डाउन्स और जेंडा हेयर एंड ब्यूटी सलोन कैवेंडिश ड्राइव से आप जाकर ले सकते हैं फ्री पार्किंग और सिक्योरिटी यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं आपको बस हमारा साथ देते रहना है कुछ ही देर में एक और सवाल लेकर आएंगे सैटरडे मस्ती मीटर में

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Lace up and lock in, it's game time at Rebel with 30% off New Balance clothing and footwear, and 30% off all Adidas adult clothing, plus 30% off all Adidas kid shoes. Hurry, these deals and more end Sunday only at Rebel Sports. See online for T's and C's.
2: It's bonus time at Noel Leeming. Get a bonus $50 gift card for every $500 you spend on selected products. Don't miss out. Offer valid until Sunday 17th May. Conditions and exclusions apply. Only at Noel Leeming.

0: City flair or mountain air? Enjoy both with Jetstar's Explore Local Sale on now. Plan a New Zealand trip with fares like Auckland to Christchurch from just $63 or Christchurch to Hamilton from just $71.
1: That's choice.
0: It's time to explore your own backyard. Hurry, sale ends midnight 18th May unless sold out. One way, excludes checked bags, travel dates and conditions apply. Book now at jetstar.com.
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
3: हाँ। अच्छा
2: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं
3: मिसेस सिंह
1: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
5: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
7: And award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
8: Kahani of Indelible Homes.

0: हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम ये है मस्ती मीटर।
1: मस्ती मीटर आपके लिए जारी है ऑन हम। कुछ इंटरेक्टिव सवाल लेकर आते हैं आपके लिए, कुछ मस्ती करते हैं आपके साथ होकर। एक पहली इस बार मैं लाया हूँ, इसका जवाब आप 5599 पर भेजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसके काफी जवाब आए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ग्रेट पार्टिसिपेशन। अभी इस पहली का सही जवाब आप हमारे पास भेजिएगा। एक घर में दो बहनें रहती है, जब एक आती है तो दूसरी चली जाती है, बताओ कौन। एक घर में दो बहनें रहती है, जब एक आती है तो दूसरी चली जाती है, बताओ ये क्या है। इस पहली का जवाब क्या हो सकता है, आप हमारे पास 5599 पर जवाब भेजे अपने नाम के साथ। कुछ डेडिकेशन, कुछ शाउट आउट अगर आपको लिख करके भेजना है शौक से करें, ताकि मैं आपको भी याद कर लूं। जिनको आप याद करना चाहते हैं, जिनका नाम आप रेडियो पर सुनना चाहते हैं, उनको भी मैं शामिल कर लूं, उनको भी गुड मॉर्निंग कहने का मौका मुझे भी मिल जाए। एक घर में दो बहनें रहती है, जब एक आती है तो दूसरी चली जाती है, ये कैसा घर है और कौन है ये दोनों, आप हमें बताओ। कृष का साथ है।

कविता कृष्णमूर्ति एंड शंकर महादेवन को आपने सुना, बहुत ही प्यारा ये गाना पुकार से हमने लिया था, फिल्मी पर्दे पर माधुरी दीक्षित को आपने सुना। आप में से कितने लोग गिरमिट के बारे में जानते हैं? जब बहुत सारे लोग इंडिया से अलग अलग देशों में गए थे गिरमिट ईरा के दौरान, जहां पर उनको काम करने के लिए लेकर जाया गया था, और फिर काफ़ी लोग वहीं पर रुक गए और अपना एक फैमिली वहाँ पर स्टार्ट कर लिया, वहाँ पर जनरेशन शुरू हो गए। ऐसा ही कहानी है गिरमिट जो फिजी में हुआ था, और हमारे पूर्वजों को लाया गया था टू फिजी और वहाँ पर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए, और फिर काफ़ी वहाँ पर रुक गए और 5th-6th जनरेशन फीजियंस हम लोग वहाँ पर अभी है। तो आज लेस्ट वी फॉरगेट द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर पाइनिया जनरेशन, 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे को आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये एक इवनिंग रहेगा ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉग्निशन। आज ये होगा मलयोला कम्युनिटी सेंटर में, 16 वायकौरी प्लेस मैंगरी में, शाम 4:30 बजे 4:30 PM ये इवेंट शुरू हो जाएगा, 8:30 PM तक चलेगा। डोर्स विल ओपन एट 4 PM, तो आप 4 PM से यहाँ पर जा सकते हैं। नेटवर्किंग, टी और स्नैक्स शार्प 4:30 PM शुरू होगा। फ्री एंट्री है, ये बिल्कुल फ्री इवेंट है आपके लिए। कैंडल कमेमोरेशन होगा, आर्टिफैक्ट डिस्प्ले होगा, सीनियर्स रिकॉग्निशन अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा, कल्चरल परफॉर्मेंसेज होंगे, लाइव सिंगिंग, रोल प्ले, क्विज, स्पॉट प्राइजेस, स्पीचेस और बहुत कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। तो आप 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे में जा सकते हैं। अभी से 147 ईयर्स अगो जो हमारे एंसेस्टर्स है, पहली बार शिप के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया था फीजी, जहाँ पर वहाँ पर उन्होंने काम किया और फिर अपना ही परिवार वहाँ से उन्होंने शुरू किया, और अभी बहुत सारे डिसेंडेंट्स अभी फीजी में रहते हैं और कुछ यहाँ पर है, हम भी वहाँ से हैं। तो आपका इंतज़ार रहेगा।

0: जरूरी है मस्ती मीटर के साथ।
1: You're listening to Musty Meter on Saturday Breakfast Show. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। 16th May, it's 9:44 now, studio clock. हमारा जो सवाल है, एक घर में दो बहनें रहती है, जब एक आती है तो दूसरी जाती है, बताओ कौन है ये एक पहली। बहुत ही मज़ेदार पहली और जवाब भी बहुत ही सिंपल है। काफ़ी लोगों के जवाब हमारे पास आ रहे हैं और काफ़ी लोगों का जवाब इनफैक्ट गलत भी आ रहा है, तो आप हमें बताएं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। एक घर में दो बहनें रहती है, जब एक आती है तो दूसरी चली जाती है। कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा अबाउट हिडन डीएनए हिस्ट्री ऑफ जापान, जो रीसेंट रिसर्च ने पब्लिश किया है।
0: टोस्ट, कॉफी और हम का एनर्जी। सुबह हो गई मामू। सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम। May month is NZ Music Month. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग। Presenting Back Your Backyard Beats, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार। आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे। ट्यून इन करो और अपने Backyard Beats को दो फुल सपोर्ट। Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
2: Make your budget go further this autumn at Mitre 10. Stride rubber gym tiles, now only $35 each. Plus warm up with 15% off oil-free column heaters. Ends 27th of May.

0: और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स,
2: हम
1: ये है मस्ती मीटर।
3: You're listening to Masti Meter on Hum, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। दो दिन पहले यानी 14th मई को इस स्टडी को पब्लिश किया गया है इन जापान। एक मेजर जेनेटिक स्टडी ने रिवील किया है प्रीवियसली अननोन एंशियंट पॉपुलेशन इन जापान। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है एक थर्ड एंसेस्ट्रल ग्रुप बियॉन्ड द नोन टू ओरिजिन्स। अभी तक सिर्फ दो ओरिजिन के बारे में पता था, लेकिन अब थर्ड एंसेस्ट्रल ग्रुप के बारे में खोजबीन किया गया है। और दिस रीशेप्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली ह्यूमन माइग्रेशन इन साउथ वेल इन ईस्ट एशिया। और स्टडी ने ये भी लिंक किया है कि एंशियंट डीएनए टू मॉडर्न हेल्थ ट्रेड्स। और रिसर्चर्स ने कहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लेक्स है देन प्रीवियसली थॉट। तो ये एक अलग हिडन डीएनए हिस्ट्री ऑफ जापान ढूंढ निकाला गया है और बहुत ही वंडरफुल रीड ये बना है। और मैंने सोचा कि आपके साथ मैं ये शेयर करूं। कृष्ण नायडू, आपका मैसेज हमें मिल चुका है, थैंक यू सो मच, लवली मैसेज। और आपने खासतौर पर याद किया है, आपने लिखा है, एंजॉइंग योर म्यूजिक एंड कंपनी टुडे, डेडिकेशन टू माई वाइफ विशालनी वंदना, हु इज ऑन डे 3 ऑफ 8-day वर्क शेड्यूल। बिग हग्स एंड लव फ्रॉम किड्स कृष्णा खुशी, विशान बती एंड हस्बैंड कृष्ण नायडू की ओर से। जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स अभी ट्रैवल कर रहे हैं, शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं, या कुछ लोग घर पर आराम कर रहे हैं, स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कृष्ण का साथ है।

0: breakfast on Hump.
1: आपका moment, Krish का magic, only on Hump.
2: Welcome back everyone, a very good morning. Saturday breakfast show जारी है. It's 10:03 on our studio clock. 16th मई है और आपका special दिन है, wedding anniversary है या फिर आपका जन्मदिन है. A very happy birthday और बहुत सारी बधाइयां आपको देना चाहेंगे. अभी फिलहाल 10 to 11 आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं जुगाड़ जंक्शन. तो स्वागत है आपका.
1: Saturday breakfast में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर.
2: जुगाड़ जंक्शन में लेकर आते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे हैक्स जो आपके लाइफ को और भी कंफर्टेबल और इजी बना सकते हैं. आज मैं बहुत सारे हैक्स लेकर आया हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए. सबसे पहले तो माइक्रोवेव कैसे क्लीन कर सकते हैं आप, और केबल ऑर्गेनाइजर कैसे आप बना सकते हैं घरेलू नुस्खों के साथ. स्कफ मार्क्स को रिमूव करने के लिए टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आपको नहीं पता ये बताऊँगा. साथ ही में बेकिंग सोडा और लेमन एक बहुत ही बेहतरीन सिंक क्लीनर भी बन सकता है. इस पर जानकारी मैं आज आपको दूंगा. कुछ ऐसे हैक्स जो हमें नहीं पता होता है लेकिन लाइफ को बहुत आरामदायक बना देता है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. 12 तक हमारा साथ रहेगा. गुड मॉर्निंग एवरीवन.

You're listening to number one. हम playing Bollywood's biggest hits. मैं कृष्ण आपके साथ दे रहा हूँ. अगर आप एक बाउल में पानी भरे और उनमें कुछ लेमन स्लाइसेस काट कर डाल दे और 3 to 5 minutes माइक्रोवेव में आप इनको घुमाते हैं, the steam would loosen all the grease और आप अपने माइक्रोवेव को वाइप कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली सारे ग्रीस को निकाल सकते हैं और माइक्रोवेव 3 to 5 minutes के अंदर साफ़ हो जाएगी. इसके अलावा अगर केबल ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आपके घर पर क्लिप बाइंडर क्लिप्स होंगे, वो अपने डेस्क के एजेस में आप लगा सकते हैं और जो चार्जिंग केबल्स है आप उसके थ्रू डालकर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फैशन में आप उसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे ताकि वो टेंगल ना हो और वायर्स नीचे ना गिर जाए या एक सेफ्टी रिस्क भी बन जाता है क्योंकि अगर आप गिर जाते हैं, अगर आपके पाँव के नीचे आ जाता है देन इट बिकम्स एन इशू एज वेल. स्कफ मार्क्स को कैसे रिमूव करना है यूजिंग टूथपेस्ट, इस पर भी जानकारी दूंगा. इसके अलावा एनजेड म्यूज़िक मंथ अभी जारी है और बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट को हम सलाम कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं, उनके काम को सराहा जा रहा है, उनको बहुत प्यार दे रहे हैं आप अपने वोटिंग के जरिए. टॉप 3 में अगर आप उनको लेकर आ जाएंगे तो उनके गाने रोवा पर फीचर होंगे और हम चाहते हैं कि हमारे लोकल फनकारों को ये ब्रेक मिले, ये अपॉर्चुनिटी मिले और हम ऐसा कर रहे हैं आपके बदौलत क्योंकि आपकी वोटिंग के आधार पर विनर को चुना जाएगा. कृष के साथ है, गुड मॉर्निंग, सुनते रहो.

0: Junction on Saturday Breakfast.
1: डायरेक्शन आपके लिए जारी है ओनली ऑन हम मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और 12 तक हमारा साथ रहेगा 10:22 ऑन आवर स्टूडियो क्लॉक 16th में आज है हमने एक सवाल आपसे पूछा था लास्ट आवर पर काफ़ी लोगों का जवाब यहाँ पर आया है कुछ लोगों का गलत जवाब लेकिन कुछ लोगों का सही अभी मैं आपको जवाब बताने जा रहा हूँ एक घर में दो बहनें रहती है जब एक आती है तो दूसरी चली जाती है द सही जवाब है इस पहली का जवाब मैंने पूछा था और सही जवाब है दिन और रात और अतीश फ्रॉम वेलिंगटन आपका जवाब बिल्कुल सही आया है थैंक यू सो मच कुछ और लोगों ने भी सही जवाब भेजा है सो थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये जो वंडरफुल इंटरेक्शन रहा है कुछ ही देर में एनजेड म्यूजिक मंथ के बारे में बातें करेंगे और लोकल आर्टिस्ट के गाने आप सुनते हैं हम पर कैसे आप उनको वोट कर पाएंगे और कैसे उनको आप टॉप 3 में ला पाएंगे इस पर बातें बहुत ही जल्दी

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. Sif Rovapar.
1: I know my sales team really well, but not how to give them the tools to manage every lead.
2: When you're a Spark Business customer, you get a hub full of local tech experts to advise you on the best solutions. Spark, the best bench in business.
3: Farmers Mega Home Sale is on now with all Sleepyhead beds half price. Super deals on chiropractic bed sets and mattresses from $9.99. And super deals on all Balance Plus Queen bed sets and mattresses. Shop Sleepyhead beds at Farmers. Conditions and exclusions apply.
4: It's bonus time at Noel Leeming. Get a bonus $50 gift card for every $500 you spend on selected products. Don't miss out. Offer valid until Sunday, 17th May. Conditions and exclusions apply. Only at Noel Leeming.
5: Join the Great Big Balance Check at New World. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
6: There are days when you nail parenting, but with no food in the fridge, this isn't one of them.
7: Dash! Savior of the lunchbox!
6: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
7: Dash!
8: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
9: हाँ. अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
9: मिसेस सिंह
10: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.in.
12: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
13: TradeDepot.co.nz.
14: Bunnings has lowest prices nailed.
15: Burnett's 1kg Green Supreme uncoated lawn seed, just $10.89. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
16: Bunnings Warehouse.
17: Playing Bollywood's biggest hits.
18: Budget Hector Gandhi.
19: जुगाड़ जंक्शन इज प्लेइंग फॉर यू राइट नाउ. अभी हम आपके लिए कुछ ऐसे जुगाड़ लेकर आएंगे, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जिसमें आप घरेलू जुगाड़ निकाल सकते हैं वो शेयर करेंगे आपके साथ में. लेकिन उससे पहले द मोस्ट अवेटेड जो मुझे इन्फॉर्मेशन आपको बताना था, विच इज़ एनजेड म्यूजिक मंथ. ये होने जा रहा है, ये मतलब पूरा महीना भर एनजेड म्यूजिक मंथ रहेगा. बैक योर बैक यार्ड बीट्स इज़ आवर थीम, जहाँ पर हम लोग सारे लोकल आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करेंगे, उनके कामों को सराहेंगे, सलाम करेंगे, एंड यू शो देम सो मच लव, क्योंकि आपके वोटिंग के आधार पर ही दे विल बिकम द विनर्स और टॉप थ्री में ये आ सकते हैं. टॉप थ्री पर आने के बाद इनके गाने रोवर पर फीचर होंगे और गिफ्ट हैम्पर भी जीतने का मौका रहेगा. तो कोई भी अगर आप गाना सुनते हैं जो 8 AM, 11 AM, 2 PM, 5 PM और 10 PM वीकडेज में प्ले किया जाएगा, आप इनको वोट कर सकते हैं. और 5599 पर MM के साथ आप इनका नाम भेजें और आपका वोट काउंट किया जाएगा टुवर्ड्स डिसाइडिंग अ विनर. साथ ही में आप हमारे सोशल्स पर जाते हैं तो इनका वीडियो मिलेगा, आपको लाइक कमेंट और शेयर करने का मौका है टू शो योर सपोर्ट. विनर विल बी डिसाइडेड बाय टोटल एंगेजमेंट, रेडियो वोट्स और सोशल लव. जितना आप देंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे. हमारे आर्टिस्ट के नामों में से कुछ नाम है विजय वर्मा, जसराज बसरा, सेंसी प्रभाकर और रांझा रंजन और शहोता विजन और साथ ही में संदीप लुबाना जैसे कलाकार जो लोकल स्टार्स हमारे हैं ये परफॉर्म करेंगे. ये इनके गाने बज रहे हैं और इनके लिए आप वोटिंग भी कर सकते हैं. कुछ देर में कुछ और जुगाड़ जंक्शन में इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे कि कैसे कुछ घरेलू नुस्खों को आप इस्तेमाल करके लाइफ और आसान बना सकते हैं.

मिस्टर केके, बहुत ही प्यारा ये गाना हमने आपके लिए पेश किया है. इनफैक्ट केके के सारे गाने बहुत प्यारे हैं. वी लव यू एंड मिस यू केके. इतने सारे वंडरफुल सॉन्ग्स आप हमें देकर गए हैं. यू विल फॉरएवर बी रिमेंबर्ड थ्रू योर सॉन्ग्स. जुगाड़ जंक्शन जारी है और ऐसे में क्या कुछ आप जुगाड़ कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे, वो हम लेकर आए आपके लिए. हमेशा सॉक्स का प्रॉब्लम होता है, एंड आई हैव एनकाउंटर्ड दिस इशू एज वेल, जहां पर इतने सारे सॉक्स आपके पास होते हैं और ओवर मंथ्स आपको लगता है कि आपका सॉक्स कम ही होता जा रहा है. आप यू लूजिंग सम ऑफ देम, जैसे लॉन्ड्री के बाद पेयरिंग ढूंढना मुश्किल हो जाता है. तो आप अगर सॉक्स को एक पिलो कवर के अंदर रख के वॉश करते हैं तो दिस स्टॉप्स देम फ्रॉम डिसअपीयरिंग इन द मशीन. नो मोर सिंगल सॉक्स विद नो पेयर. और डेलिकेट आइटम्स को ये प्रोटेक्ट भी करता है. तो ये भी आई एम श्योर यू नो दिस ऑलरेडी, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जुगाड़ हो सकता है हमारे लिए. अगर आपके कपड़े पर कोई ऑयल स्टेन हो जाए, जैसे फ्रेश ऑयल स्टेन पड़ता है आपके कपड़ों पर, अगर आप थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देते हैं उनके ऊपर, तो द नमक द सॉल्ट विल एब्जॉर्ब द ग्रीस बिफोर इट सेट्स इन. तो फिर आप ब्रश ऑफ कर दें और नॉर्मली वॉश करें. ये एक सिंपल फिक्स होता है बिफोर लॉन्ड्री डे, अगर आपको ये हटाना है सॉल्ट जो ऑयल स्टेन्स होता है, फ्रेश ऑयल स्टेन्स. आप सुनते रहो कुछ ऐसे ही और भी बातें जुगाड़ जंक्शन में, हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं. इट्स अ वंडरफुल डे आउट देयर, आप ज़रूर इन्जॉय करें, इस दिन का भी फ़ायदा उठाएं. इट इज़ 16th में आपका जन्मदिन है. वेरी हैप्पी बर्थडे एवरीवन. कृष का साथ है.

0: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और आपके लिए सैटरडे ब्रेकफास्ट शो जारी है और भी बहुत इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आएंगे. कुछ बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन भी रहेगा आपके लिए. 12 तक आपको हमारा साथ देना है. जितने लोग अभी शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं, कुछ लोग अभी घर पर आराम कर रहे हैं या कुछ सेलिब्रेशन है घर पर, उसके लिए तैयारियाँ भी चल रही है. जबकि सैटरडे है, वीकेंड है, तो आपको याद करते हैं. और अगला गाना खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं और जो अभी हमारी तरह काम कर रहे हैं. आप भी अगर ऑफिस में हैं या फिर अपने काम पर पहुंच चुके हैं, काम स्टार्ट कर चुके हैं और एक तरफ आप हम का भी साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. अगला गाना आप सभी के लिए, एंजॉय दिस वन.
1: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स.
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
3: 80s के रेट्रो गाने.

rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.

You're listening to Krish on Hum, playing Bollywood's biggest hit. Saturday breakfast show जारी है. Interesting science related खबरें भी लेकर आते हैं. 12th मई को इसी साल इस रिसर्च को पब्लिश किया गया है. यूनाइटेड स्टेट्स की ये कहानी है जहां पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने क्रिएट किया है एक डिटेल्ड कॉस्मिक वेब मैप. और ये मैप मैसिव स्ट्रक्चर्स शो करता है विच कनेक्ट्स गैलेक्सीज. और एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा है कि ये डीप स्पेस इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया जा सकता है. और ये एक बहुत ही फायदेमंद डिस्कवरी रहा है. और दिस रिसर्च हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ गैलेक्सीज फॉर्म्ड ओवर टाइम. और साइंटिस्ट ने कहा है कि इट इज़ वन ऑफ वेब्स बिगेस्ट अचीवमेंट्स येट. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. ऐसे इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे. फिलहाल सैटरडे ब्रेकफास्ट शो को आगे बढ़ाते हुए और भी प्यारे गाने आपके लिए.

0: Saturday breakfast on Hum.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel. Or tuck into beef enchiladas, tender pulled beef, soft tortillas and bright tangy sauce. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
3: Schools use fibre to study in virtual reality, whereas Kim used it to study her family's genealogy to discover she has a long-lost relative in Taupo who streams true crime podcasts about missing people that often begin with an ad from Chorus saying New Zealand runs on fibre.
4: Forget counting sheep, count the savings at Briscoe's with a huge 25 to 60% off the entire store. Plus, shop 60% off Cozy Home Super Savers, like all Zip Electric blankets 60% off. Hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
5: Desi Biz shout out on Saturday breakfast. आपका moment, Krish का magic, only on Hum.
7: Welcome back everyone. This is our final hour. आप हमारा साथ दे रहे हैं 6 to 11 अभी तक दिया. Thank you so much. बहुत ही अच्छा लगा. और ऐसे ही साथ दीजिएगा क्योंकि इस घंटे पर भी आपके लिए Bollywood's biggest hits तो रहता ही है हमेशा, of course. और प्यारे गाने हम लेकर आए हैं और amazing lineup of songs लेकर आए हैं जो आपको बेहद पसंद आएगा I'm sure. इस घंटे पर कुछ Bollywood news भी लेकर आएंगे, अपकमिंग Bollywood फिल्मों पर जानकारी देंगे, खासतौर पर जो मूवी आप आने वाले दिनों में देख पाएंगे इस पर एक नज़र दौड़ाएंगे और आपके शेयर करेंगे कि आपके फेवरेट स्टार कब और किस फिल्म में नजर आएंगे. दृश्यम 3 पर हम बातें करेंगे बहुत ही जल्दी. उसके अलावा रामायण पार्ट 1 भी रिलीज होने को है, इस पर भी बातें करेंगे इसी घंटे पर. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं.

अपकमिंग बॉलीवुड फिल्मों की ओर देखें तो आई एम वेरी प्लीज्ड कि अच्छे फिल्म आने वाले हैं और प्यारे फिल्म्स को भी आप बहुत ही जल्दी देख पाएंगे. संजय लीला भंसाली डायरेक्टेड मूवी बहुत जल्दी रिलीज होने को है 14th August. इनफैक्ट इट्स अ बिट अवे टाइम वाइज, लेकिन देखा जाए तो इट्स वर्थ द वेट क्योंकि लव इन वो इस फिल्म का नाम है जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रियल लाइफ कपल इज गोइंग टू बी प्लेइंग रियल लाइफ कपल और विकी कौशल भी नजर आएंगे इसमें. डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली और इसमें रोमांस होगा, ड्रामा होगा और इंटेंस इमोशंस भी होंगे. लार्ज स्केल प्रोडक्शन है और म्यूजिक ऑलरेडी ऑनलाइन बस क्रिएट करना शुरू कर चुके हैं. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ह्यूज बॉक्स ऑफिस ओपनिंग हो सकता है. इसके अलावा दृश्यम 3 अजय देवगन रिटर्न्स एज विजय सलगांवकर इन दृश्यम 3. थ्रिला विल कंटिन्यू और मिस्ट्री और क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरी लाइन और भी मजबूत होने जा रहा है. तब्बू और श्रिया शरण रिप्राइज द इम्पोर्टेंट रोल्स. डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने प्लान किया है अनदर सस्पेंस फिल्ड फिल्म और कहा गया है कि काफ़ी सस्पेंस इस मूवी में रहेगा. सारे फैंस ईगली अवॉइड कर रहे हैं कि कब इस मूवी को रिलीज़ किया जाए क्योंकि नेक्स्ट ट्विस्ट क्या होगा इस फ्रेंचाइज में, लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं वो जानने के लिए. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. रामायण पार्ट 1 पर बातें करेंगे बहुत ही जल्दी.

0: You're listening to number one humping Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ साइंस रिलेटेड जानकारी लेकर आता हूँ, हेल्थ रिलेटेड जानकारी भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ. एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जिसमें सोसाइटी फॉर कार्डियोवैस्कुलर एंजियोग्राफी और साथ में एंजियोग्राफी और इंटरवेंशन ने इसको पब्लिश किया गया 15 मई को. उनके द्वारा ये कहा गया है कि एक साइलेंट इनहेरिटेड कोलेस्ट्रॉल थ्रेट मिलियंस को अफेक्ट कर सकता है और उनको स्ट्रोक और कार्डियोवैस्कुलर डेथ का रिस्क भी बढ़ सकता है. इवन व्हेन स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल अपीयर्स नॉर्मल, 1 in 5 पीपल मे कैरी दिस हिडन कोलेस्ट्रॉल रिस्क, कहा गया है. रिसर्चर्स ने ओवर 20,000 पेशेंट्स के रिजल्ट्स को एनालाइज किया और ये सामने आया है कि वेरी हाई लेवल्स ऑफ द इनहेरिटेड कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल, जिसका नाम है LP इन ब्रैकेट्स A, ड्रामेटिकली रिस्क ऑफ स्ट्रोक और कार्डियोवेस्कुलर डेथ को राइज कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है, और मेजर हार्ट कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं. मोस्ट पीपल जिनको एलिवेटेड LP इन ब्रैकेट्स A है, सिम्टम्स इनको नहीं होता है, इसलिए सिंपल ब्लड टेस्ट ये डेंजरस हिडन फैक्टर को आइडेंटिफाई कर सकता है. इसलिए हमेशा ब्लड टेस्ट, रूटीन ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि आपके ब्लड में क्या कुछ है, कोलेस्ट्रॉल जैसे या शुगर फॉर एग्ज़ाम्पल. तो ये किडनी फंक्शन, ये सभी कुछ ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है, तो आप ज़रूर ये कराएं. अगर और ऑब्वियसली मेडिकल एडवाइस ले, मेडिकल असिस्टेंस ले, अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करें. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ रहेगा ऑल द वे टिल मिडडे. कुछ देर तक और हमारा साथ है.
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम. कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: You're listening to a number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Ek ke baad ek Bollywood information bhi hum lekar aaye hain aapke liye, especially upcoming filmon par, kyunki aapke saath share karne ke liye ek aur movie hai. 8th November ko ye release hogi, Ramayana Part 1, jisme Ranbir Kapoor, Sai Pallavi aur Yash kaam karenge. The world is already appreciating Sai Pallavi aur inka jo innocence hai aur itna प्यारा फेस इस सीता माँ सीता रोल के लिए चुना गया है, तो एवरी फैंस आर अप्रिशिएटिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म. रणबीर कपूर के काफ़ी फिल्में रिलीज हो रहे हैं इनफैक्ट इस साल, और रामायण पार्ट वन भी एक है इसमें. ये दिस फिल्म इज़ बेस्ड ऑन एंशंट इंडियन एपिक रामायण, हमारे इस ग्रंथ पर आधारित है, और इट प्रोमिसज लार्ज स्केल विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंसेज इसमें होंगे. सनी देओल और साथ में लारा दत्ता भी इस फिल्म में नजर आएंगे मेजर रोल्स के साथ. और दिस मूवी इज़ द मोस्ट एंटिसिपेटेड बॉलीवुड रिलीज ऑफ 2026 ये बताया गया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सैटरडे ब्रेकफास्ट शो जारी है और 12 तक मैं आपका साथ दूंगा. सुनते रहो बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट ओनली ऑन योर नंबर वन हम. You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Saturday breakfast, Desi Biz shout out. जितने भी हमारे small businesses हैं और साथ में हमारे successful, wonderful businesses जो हमारा साथ देते हैं, हमको support करते हैं. A very big shout out to you all. और ऐसे ही हमके साथ आप ज़रूर काम करते रहे, हम आपको याद करते रहते हैं, entertain करते रहते हैं, और आप हमारा साथ देते हैं as a wonderful listener and a strong support in the community. Thank you so much. जितने भी हमारे local businesses हैं, very बिग शाउट आउट टू यू. अगला गाना आप सभी के लिए मैं शामिल करने जा रहा हूं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं. जारी है आपके लिए हम पर सैटरडे ब्रेकफास्ट शो.
2: कोई शिकवा ना करेंगे ना आजमाएंगे, तुम जहां पाव रखोगे ये दिल बिछाएंगे. हम तुम्हारी वफा की दुनिया में प्यार ही प्यार लुटा

You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hit. Saturday breakfast show jari hai 16th mein hai. Agar wedding anniversary aap celebrate kar rahe hain, to team hum ki or se bahut sari shubhkamnaen. Aap dono ki jodi hamesha salamat rahe, bahut pyar rahe, zindagi bhar tak. Yahi prarthana hum karte hain aapke liye aur best wishes hum aapko dena chahenge team hum ki or se. Happy wedding anniversary everyone. Aane wale filmon mein agar dekha jaye to ek aur film hai jo log look forward kar rahe hain, which is Dhamaal 4. इसमें अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी नजर आएंगे. 3 जुलाई को इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा. कॉकटेल 2 भी मई 19 को कहा गया कि रिलीज़ होगी. शाहिद कपूर, कृति सेनन एंड रश्मिका मंडाना नजर आएंगे. होमी आदाजानिया ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. रोमांस कॉमेडी स्टाइल होंगे और ओरिजिनल कॉकटेल मूवी का रोमांस स्टाइल कॉमेडी को आगे बढ़ाते हुए एक अलग अंदाज में एक नए स्टार कास्ट के साथ कॉकटेल 2 आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा बहुत ही जल्दी सिनेमाज में. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सैटरडे ब्रेकफास्ट शो जारी है.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: With a gym personal loan, you can give your old kitchen a makeover. Combine multiple debt repayments into one. Or get from A to B in a new CAR. And for a limited time, pay zero establishment fee, saving $240. Search Gem Personal Loans and check your personalised rate in under 2 minutes, with no impact to your credit score. Establishment fee waived till May 19th, 2026. Lending criteria, TCs, fees and other charges apply.
2: It's 10 a.m. and you forgot about dinner at yours tonight. Your fridge is empty. Your place is a mess after watching last night's game. And you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World online same-day click and collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
3: Introducing Pizza Hut's new tikka and paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavour. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
4: हम सब चाहते हैं कि रिसाइकल सही तरीके से हो, तो याद रखिए, प्लास्टिक बैग, ड्रिंक कार्टन्स और पुराने लैपटॉप अपने रिसाइकल बिन में मत डालिए। रिसाइकल सही करें, ये आपके हाथ में है। सर्च ऑकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमाकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ऑकलैंड।
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

मैं आपका साथ दूंगा। आप सुन रहे हैं सैटरडे ब्रेकफास्ट शो और आज है 16th मई और मिड डे तक मैं आपका साथ दूंगा और मिड डे के बाद हमारे एक और साथी आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो यहीं पर खत्म होता है दोस्तों आपने हमारा साथ दिया थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा लगा हमारी मुलाकात अब होती है मंडे संडे को इनफैक्ट कल हम आ जाएंगे 6 PM टू मिडनाइट आपका साथ देने के लिए संडे नाइट मेलोडीज लेकर और फिर उसके बाद में मंडे टू थर्सडे नाइट कैफे में लेकर आऊँगा और ऑफकोर्स हमारा जो फेवरेट सेगमेंट नाइट कैफे के अंदर होता है चाहे वो नो लॉजिक मंडे हो चाहे वो कोक स्टूडियो रिलोडेड हो या मिडविक मसाला हो या रिदम एंड रोमेंस हो वो सभी कुछ हम एंजॉय करेंगे ड्यूरिंग द नाइट कैफे मैं क्रिश आपसे अलविदा लेता हूँ हमारी मुलाकात कल होती है 6 PM बाकी का प्रोग्राम हमारे साथी के साथ आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा उनका साथ दीजिएगा क्रिश का बहुत सारा प्यार नमस्ते

0: कॉफी और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं